नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।

0: मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। वंदन वार
3: विविध भारती।

आज का सुविचार हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। मुस्कुरा कर उठिए क्योंकि खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर और शाम को पुनः 6:35 पर आप जी माफ कीजिएगा 6:35 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान, जिसका भाग 193 प्रसारित होगा। 6:45 पर संगीत सरिता, जिसका पुनः प्रसारण शाम को 6:45 पर आप सुनते हैं, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं एसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा, इसका भाग 8 आप सुनेंगे। सुबह 7 आप सुनते हैं पुराने गीतों के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हम है राही प्यार की, ये कार्यक्रम 7:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:30 पर और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, प्रोटीन और विटामिन का महत्व, इस विषय पर डॉक्टर मीनल शाह से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुति रामकरण मीणा, प्रसारण का समय सुबह 10। रंग तरंग ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी। दोपहर 1 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दो बजकर तीस मिनट पर सदाबहार नगमे,

दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी। अपराध बोध से बचना जरूरी, मुहावरों की दुनिया, आंखों का तारा होना, उद्यमी महिला कल्पना सरोज की बातें होंगी। बातें हल्की फुल्की, परीक्षा परिणाम पर कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलाइट के सितारे, ये आप सुनेंगे। पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की है। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन, फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगी शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका प्रेम दीवाना, लेखन ब्रजभूषण का है, निर्देशक पुरुषोत्तम दार्वेकर। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का भाग 193।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज सुरों की वर्षा हो रही है। हमारे साथ हैं अनूप जलोटा जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद।
1: भजन के सुरीले संसार से परिचय करा रहे हैं अनूप जलोटा जी, और हम आज उनसे जानना चाहते हैं कि उनके तमाम भजन लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्हें किन गायकों के गाए भजन पसंद आते हैं, और उन गायकों के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, उनके गाए भजन गा के हमें सुनाएं।
2: भजन सबने गाए हैं, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिसने भजन ना गाए हो। और अब तो ये भी सिद्ध हो गया कि जो भजन है वो शास्त्रीय गायन का एक अंग है, क्योंकि जितने भी शास्त्रीय गायक हैं वो बंदिश गाने के बाद में आखिर में भजन जरूर गाते हैं, चाहे वो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हो, चाहे डीवी पलुस्कर जी हो, चाहे पंडित जसराज जी हो, या भीमसेन जोशी जी हो, या किशोरी आमोनकर जी हो, सब भजन गाते हैं। गजल कोई नहीं गाता अपने प्रोग्राम के एंड में। इसका मतलब गजल जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का अंग नहीं है, लेकिन भजन है, नहीं तो कोई ना गाता, लेकिन सभी गाते हैं। तो भजन डीवी पलुस्कर जी ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो आज तक लोग गा रहे हैं।

एक ऐसे कंपोजर जिन्होंने बड़े सुंदर भजन सबसे गवाए, श्याम तेरी बंसी, रविंद्र जैन जी।

तो ऐसे कोई गायक हैं ही नहीं जिन्होंने भजन अंग को न छुआ। इतने प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह साहब जिन्होंने गजलों को अमर कर दिया, उन्होंने जब भजन गाए तो सबका दिल जीत लिया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बस आंखें बंद करके सुनते रहें और अनूप जलोटा जी हमें भजन सुनाते रहें, बस ऐसे ही लग रहा है। एक सवाल मेरे जहन में आया जब मैं ध्यान से सुन रही थी। नई पीढ़ी एक अलग तरह के संगीत और संस्कृति में गुम है, ऐसा क्या किया जाए? अनूप जी आप बताएं कि भजन की ओर उनका रुझान हो, उन्मुख हो।
1: बस ऐसे भजन गाए जाएं, ऐसी लागी लगन जैसे,
0: क्या बात है।
1: हे राम जैसे, श्याम तेरी बंसी जैसे, तो यंग जनरेशन सुनने लगेगी। लेकिन बहुत मुश्किल गाएंगे तो नहीं सुनेंगे लोग। तो कोशिश यही की जाए कि सरलता सुगमता सामने आ जाए तो सब उसे प्रेम करेंगे
0: जी। अब अनूप जी चलते चलते आपकी किसी भजन का मुखड़ा हमें सुनाएं।

0: राम नाम अति मीठा है। अनूप जी, आपके गायकी के माध्यम से हमारे श्रोता अपनी आंखों से देख रहे हैं ये चित्र आपके शब्द चित्र के जरिए। और अब वही घड़ी आ गई है जब हम समापन करते हैं, तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं ये कड़ी। कल फिर मिलेंगे संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ। सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
5: आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारानिया, आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, मन में नाचे मन की उमंगे। बेकसूर फिल्म से ये गीत है, आवाज लता मंगेशकर की है, एहसान रिजवी के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

बेकसूर फिल्म से अभी लता मंगेशकर की आवाज में आपने गीत सुना। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नदिया के पार फिल्म से। गीतकार हैं मोती, संगीतकार सी रामचंद्र, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की। सुनिए ये गीत।

0: रही हो।
1: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में आपने सुना नदिया के पार फिल्म का ये गीत। लीजिए अब सुनिए ये संदेश।
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं

0: अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम का गाया गीत। शकील बदायूनी के बोल है, तर्ज बनाई है नौशाद अली ने। फिल्म का नाम मेला।

मेला फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आपने सुना। अब सुनिए कमल के फूल फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, श्याम सुंदर का संगीत, और इस गीत को गाया है सुरैया ने।

कमल की फूल फिल्म से सुरैया की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर और चितलकर ने। पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है श्री रामचंद्र ने।

0: सरगम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में पीएल संतोषी का लिखा गीत था और सी रामचंद्र का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा इस फिल्म से। ये गीत जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार है नौशाद अली।

ये गीत था उमा देवी की आवाज में अनोखी अदा फिल्म से। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आग से, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में ये गीत। इस गीत को लिखा है बहजाद लखनवी ने और संगीतबद्ध किया है राम गांगुली ने।

बरस की, भाई 16 बरस की, 16 बरस की भाई उमरिया, 16 बरस की भाई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल।

जैसा मुखड़ा सब बोले हाय राम होए होए सब बोले हाय राम हाय हाय सब बोले हाय राम हाय हाय सब बोले हाय राम सबकी लागी पे नजरिया सोला बरस की भई उमरिया सोला बरस की भई उमरिया सोला बरस

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आग से शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। अब आपको सुनवा रहे हैं बाबुल फिल्म का गीत। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीतकार नौशाद अली।

बाबुल फिल्म से शमशाद बेगम का गाया गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम हिराही प्यार के लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के में। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

0: तपस्या फिल्म से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आपने गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। आइए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गुलजार का लिखा गीत आर डी बर्मन का संगीत बत किया आंधी फिल्म से।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजों में। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया गीत फिल्म किनारा से गुलजार के बोल संगीत आजी बर्मन का।

किनारा फिल्म से लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में आप ये गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में वक्त है एक अंतराल का।

हम ही राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना अंतराल, और अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत अदालत फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारंट फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल, आरजी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म वारंट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

हम ही राही प्यार के की आखिरी प्रस्तुति हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में एमजी हशमत का लिखा गीत है। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम उलझन।

उलझन फिल्म से किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। एम जी हशमत का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यही संपन्न होता है। हाँ।

0: प्रातः के 8 बजे का समय होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हाकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थ

0: व्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
1: Recognizing the ambitious
2: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
3: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
4: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
9: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
10: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10,00,000 नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

हम बोल रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। बस थोड़ा सा इंतजार, कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस अभी हाजिर हुए।

लीजिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में मंगल कामनाओं के साथ। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत। मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से आवाज केके की है। देव कोहली ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

लड़का ये कहता है, ये गीत अभी आपने सुना केके की आवाज में, फिल्म का नाम था मैं प्रेम की दीवानी हूं। अगला गीत फिल्म सपने से, हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाज में, जावेद अख्तर की बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: सपने फिल्म से हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। अब सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है।

0: सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी विविध भारती सुनने वालों का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं विक्की डोनर फिल्म से ये गीत। इसे गाया है विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत दिया है डॉन एंड बैन ने।

विकी डोनर इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, विशाल टडलानी और सुनिधि चौहान की आवाजों में। क्या सुपर कूल हैं हम इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत, सोनू निगम और मीट ब्रदर्स अनजान के स्वरों में। कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स अनजान का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है वाजिद अली ने, प्रसन्न जोशी का लिखा गीत है, संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

राजीव अली के आवाज में तेरी मेरी कहानी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। और इसी गीत के साथ अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौटते हैं।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट, साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं।

0: सन ऑफ सरदार, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौसर मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिजुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से, ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना। समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतरराष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

0: नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।
1: खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना लें तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताऊंगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
0: जी।
1: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
1: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं, और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन, यानी इनकम

0: रूटीन।
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है इस ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके
1: जी
0: लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीजें साथ में ले लें तो ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है, यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है। और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी,
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे। जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं। भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी, आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले। हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की, जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं,
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीजें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी है?
1: जैसे किडनी के डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
0: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
1: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको।

0: जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं,
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा।
1: जी जी
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ
1: टमाटर बंद कर दीजिए।
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए,
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग सुनना
0: सॉन्ग।
1: है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा।
0: ओहो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ कम करना चाहो रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए। आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वह है प्रोटीन और विटामिन का महत्व। और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं।
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है।

0: है, क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
1: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है। लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
0: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए। जब
1: या धूप
0: अच्छी
1: में
0: धूप हो,
1: निकले।
0: अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वर्क में रहते हैं पैटर्न में। एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
1: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
0: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है
1: जैसे
0: जैसे फल हो गए, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। ठीक है, आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है, क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का, वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता
1: जैसे
0: है।
1: ऑरेंज है।
0: जैसे ऑरेंज है, जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है। मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है। और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज़्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज़्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज़्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स आप
1: ग्रहण
0: कर
1: कर
0: रहे
1: रहे
0: हो।
1: हैं। बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल
1: फिल्म
0: मूवी
1: से
0: से।
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या धुंधलापन
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोल्युबल सोर्सेज है तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
0: जी जी
1: दूसरा विटामिन जो बहुत ज़रूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
0: इसका और क्या काम होता है?
1: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे
0: जी।
1: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है
0: जी।
1: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
0: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है
1: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है जो कीटाणु है उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है
0: जी।
1: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
0: है,
1: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
0: जी जी और देखिए, आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
1: जी ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं। वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। हर चीज़ रोटेशन पर रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो। जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे, उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
0: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
1: इश्क भुलावा हसी तो फसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज। तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो। ठीक है, कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर।
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है।
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेगा, तब वो फायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे।
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है तो एक कॉमन सी बात है कि

0: वो एक टू एक्सटेंड, एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है. तो जो एसिड्स है स्टमक के, वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है. तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए. तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाड करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा.
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं. अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है।
0: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है. आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है. काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे. जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या
0: उसमें
1: फिर वो बिना मलाई का दूध है।
0: एग्जैक्टली अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है. तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है. एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है. वो इंटरनेट से पढ़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है.
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल नहीं,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है।
0: उनकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है.
1: बिल्कुल
0: आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका. हर एक इंसान अलग है, उनकी जरूरतें अलग है, वो एक चीज पे नहीं मापी जा सकती. और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा. तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे. रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता
1: जैसे
0: है.
1: गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
0: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं. कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है. तो जैसे मैंने बताया, रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही,
1: जी
0: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है. तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है, तो वो भी खा सकते हो. तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए. ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है. उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए. और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है. एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है. जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है.
1: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है. अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय. अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं

0: तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से लें, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए, वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

उनसे सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोलों के साथ साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में। महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: राजू है उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियादे है मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है जिसके

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, इस एल्बम से हम सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन के द्वारा लिखे गए और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुंगराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
0: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
0: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
0: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
0: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
0: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी।
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है। उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
0: जी,
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि, श्रोताओं एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं,

0: उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
1: जी
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षावन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cr

0: आने का। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cr

जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे
1: गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री

0: पुत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे
2: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
3: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ तो है ना। देखो
3: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
3: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे

0: होता क्या है? मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
3: गौरमा, गौरमा,
0: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
3: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
3: गौरमा, हाँ, पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
3: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: नहीं कटने देंगे।
3: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थी। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
5: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया,
5: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदगी के आधार।
2: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे भाई कौन है, रुको, इस पर चढ़ जाएंगे पेड़ से।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: सुनो, आगे बढ़ो।
8: अरे कहाँ
7: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
8: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा ही होने देंगे हम।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
8: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर छिपक जाओ पेड़ों से।
7: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
9: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में, चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती, इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है, और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी, और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता, आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं, और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने की ये व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की विधि पर किया गया त्याग है, या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल साफ, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं, यानी जीवन
कितना सत्य है आपके लिए, ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं। और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल लुधियानवी की बोल, एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म, और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां, और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी, खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है, और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है शैशव काल की मुस्कान के कार्यों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल का।

से नवयौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है, ना अति परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है, यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है, मानव संकीर्णता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं हमारे श्रोता। लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था की सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी उस समय, आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी। अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खो खो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है। सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई, बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई, शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे। दो कलियां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू

सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियां मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के हाथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं। बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है, स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंग की डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे, और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था, पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अटपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए, और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और
उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े, बहुत विशाल बन जाते हैं।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में, किसी की फूलों जैसी हजी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भुगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी बर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध भर दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, क्या दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में। सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों
दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़ी। ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी। बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है। वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं? बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर, और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है। इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और तो बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता। आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ। आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

देश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने

0: इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थलीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
5: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
6: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझकर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
5: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
2: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
7: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगरी में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के संगीत के साथ।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए बहुत

0: हम सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो। नमस्कार।

0: की सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
1: ख्याल रखने वाला
0: जी।
1: है ना। विषय बता दे।
0: चलिए
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम।

0: मैंने कभी पढ़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी, मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे, वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी, लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये, बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
0: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
0: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है, और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं, है ना,
0: सचमुच
1: जगमगाते हुए।
0: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में।
1: जी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो, या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
0: यानी
1: और
0: दिल को
1: हम उसको
0: कचोटते रहता है।
1: कचोटते रहता है और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं, या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
0: अगर
1: कि
0: बताना चाहते
1: बताना चाहते हैं कि
0: हैं।
1: कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोबरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
2: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
2: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
2: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने
0: जब
1: भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के मुंह से।
0: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना? तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना।
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ तो बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है,
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए।
1: जी,
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है।
1: क्या
0: तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है, इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है, छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है,
0: मिलती है ना।
1: जी।

0: मोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना। तो
0: बिल्कुल
1: हम
0: सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो।
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो। अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो
0: कुछ
1: जाते हैं।
0: हाँ और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं। फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं ना
0: हाँ
1: कि
0: बिल्कुल
1: अरे माँ तो
0: ऐसे
1: हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के
0: बिल्कुल।
1: कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और
1: कभी
0: जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है
1: और
0: या
1: अगर
0: यूं।
1: मां ना हो इस दुनिया में तब तो
0: हाँ
1: और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें, आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी हम अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया।
0: अच्छा।
1: बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल
1: पर
0: जाता
1: ऐसा
0: है।
1: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
0: बिल्कुल,
1: बोध।
0: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहां भी
1: वो
0: काम आई
1: आग
0: है।
1: का तारा होते हैं ना बच्चे
0: हाँ इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपया बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है
0: बिल्कुल
1: ना
0: सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो इस समय समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है, दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक
0: बिल्कुल
1: साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: इतने भी संदेशे खूब हंसाया हमें।
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते
0: हाँ
1: हंसते।
0: बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
2: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को

0: के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिल
0: घर में
1: चुकी
0: ही
1: थी,
0: मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू
0: जी
1: हुआ।
0: जी
1: अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए,
0: जी
1: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
0: जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा, और कहते हैं ना, पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया, और कहते हैं ना, पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना, गाड़ियों की, लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया,
1: अच्छा
0: और
1: जी,
0: लता जी भी वहां थी, और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी, और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भी आ गई डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है, आप यकीन माने। वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई, और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां
1: वाह वाह वाह भाई,
0: तो
1: ऐसा
0: कहां से कहां ये बात देखिए
1: है
0: पहुंच
1: आपने
0: गई।
1: जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ,
0: जी
1: लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये
0: ये तो
1: गाना।
0: आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहां से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
1: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई,
1: जी
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी, और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये

0: म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है।
1: जी
0: मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
1: लेवल
0: कहते
1: पे
0: ना
1: आपको
0: लेवल
1: गाना
0: पे
1: है।
0: बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढाढ़स बंधाया कि
1: जी
0: इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो वे भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मैं मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी आप बताइए, आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि
0: इंस्टेंट
1: बहुत
0: फूड की तरह।
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: इतना पेशेंस रखते
1: जी
0: थे लोग,
1: जी जी
0: और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
1: और जो
0: किसी गाने
1: इंग्लिश में
0: को।
1: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था,
0: क्या बात है।
1: जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहां म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने

0: कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक। हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के
1: जी
0: बारे में बताया है
1: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराए, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
1: और
0: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप।
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा, दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने, इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी,
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गए थे, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था।

0: है कि नहीं,
1: बिल्कुल सही
0: मजेदार।
1: बात
0: और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले, आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
1: और आपकी ये दोस्ती उतनी
0: अभी भी
1: पुरानी?
0: कायम है।
1: अच्छा,
0: जी हाँ
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल
1: फील्ड के
0: बिल्कुल,
1: लोग हैं?
0: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
0: जी
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
0: जी
1: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा,
0: जी हाँ,
1: आप
0: फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतू रंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना
1: अच्छा,
0: मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है,
0: जी
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी रुक दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा,
0: हाँ
1: वैसे बहुत अच्छा
0: अच्छा
1: लगा, और
0: लगा।
1: बहुत देखिए ऐसा है कि
0: चलो
1: मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे, वो गानों में
0: बहुत बहुत
1: रस
0: शुक्रिया।
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
1: जी
0: मकसद पूरा होता है,
1: जी
0: और ये आना चाहिए तभी
1: जी
0: जाके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: अच्छा,
1: थी?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रॉ आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
1: जी
0: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मूरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए,
1: जी
0: तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी, वो
1: अच्छा,
0: भी जानती हैं उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन
0: पूछिए।
1: लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
0: जी
1: बात करें,
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
0: सबके
1: किस्म
0: मन,
1: की
0: सबके
1: चीज
0: दिल
1: हुआ
0: में ये बात
1: करती थी।
0: होती है।
1: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं
1: अच्छा।
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों
1: जी
0: तक। और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी।
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: अकेली और आज भी उनकी पारी चल रही है, उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं, और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में
0: करते थे,
1: रेडियो पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते
1: जी
0: थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल
0: तो,
1: नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती। जरूर, मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है, और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है ये?
1: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
1: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारो, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है, कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं,
1: जी
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं, और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारी हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो, डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, और नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहां भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में। 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई,
0: वाह,
1: और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ। तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो बहुत
1: अच्छी
0: ही अच्छी
1: बात है ना।
0: बात है।
1: और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहां मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कंगन बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो आप खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीत नुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किल थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है
1: बिल्कुल
0: और तृप्ति नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल भैरव जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरे भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी हैं। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते हैं ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए, और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आईलैंड है, और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया, बाकायदा चीजें मैंने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं, उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उनपे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूत का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है, और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहां बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे, आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का, और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। तो समझे ना। हाँ। तो और कुछ बनाने का, कुछ

0: कहते हैं ना, क्रिएशन का शौक है। बस स्टेज पे करूं मैं, या स्मॉल स्क्रीन पे करूं, या खुद गाऊं, अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का,
0: जी
1: तो वहां कौन सी जगह जहां आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊं कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिती, बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था, आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: बनी थी जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
1: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
0: जी
1: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हो?
0: जी मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
1: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
0: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था, और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहदिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड।

इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज, नई सोच और नई ऊर्जा का अपना कार्यक्रम युवावाणी, और मैं हूं आपके साथ रानी राजश्री। और आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी @90 उत्सव को। श्रोताओं, 90 वर्षों की यह यात्रा केवल प्रसारण की यात्रा नहीं है, बल्कि देश की भावनाओं, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य और जन जन की आवाज को जोड़ने का इतिहास है। आकाशवाणी ने समय के साथ न केवल सूचनाएं पहुंचाई, बल्कि समाज को जागरूक करने, प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी निरंतर किया है। रेडियो की मधुर आवाज से लेकर आज के आधुनिक प्रसारण तक आकाशवाणी ने हर पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी पहचान बनाए रखी है। गांव की चौपाल हो, किसानों की बातें हो, संगीत की महफिल हो या युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला मंच, आकाशवाणी हमेशा लोगों के दिलों के करीब रहा है। इसी भावना के साथ आकाशवाणी की टीम पहुंची सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल डाला सोनभद्र, जहां विद्यार्थियों के बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता कराना नहीं था, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा, आत्मविश्वास और ज्ञान को सामने लाना भी था। विद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा था। बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास था और मन में कुछ नया सीखने की उत्सुकता। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब बच्चों ने पूरे उत्साह और समझदारी के साथ दिया। प्रश्न मंच की शुरुआत जैसे ही हुई, पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। कहीं इतिहास से जुड़े प्रश्न थे, कहीं विज्ञान और खेल जगत से जुड़े प्रश्न, तो कहीं भारत की संस्कृति, संविधान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े सवाल। बच्चों ने जिस तेजी और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिए, वह वास्तव में प्रशंसनीय था। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जिन्होंने बच्चों की सोच और तर्क क्षमता को परखा। श्रोताओं, जब बच्चे मंच पर आते हैं, प्रश्नों का सामना करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देते हैं, तब उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। आज के समय में युवाओं को केवल किताबों तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उन्हें मंच चाहिए, संवाद चाहिए और प्रतिभा दिखाने का अवसर चाहिए, और यही कार्य वर्षों से आकाशवाणी निरंतर करता आ रहा है। आकाशवाणी @90 के इस विशेष वर्ष में विद्यालयों और युवाओं के बीच इस प्रकार के आयोजन यह संदेश देते हैं कि ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक सोच ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल डाला सोनभद्र में आयोजित यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता बच्चों के उत्साह, उनकी प्रतिभा और सीखने की जिज्ञासा का सुंदर उदाहरण बनी।

0: कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी सराहनीय रहा। उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के मन में आकाशवाणी के प्रति विशेष उत्सुकता दिखाई दी। कई विद्यार्थियों ने रेडियो और प्रसारण से जुड़ी बातें जानने में रुचि दिखाई और कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित नजर आए। श्रोताओं, जब नई पीढ़ी ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तभी समाज और देश मजबूत बनता है। आज इन बच्चों की चमकती आंखों में जो सपने दिखाई दिए, वही आने वाले भारत की उम्मीद है। और अब समय है उस विशेष रिकॉर्डिंग को सुनने का, जिसे आकाशवाणी की टीम ने सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल डाला सोनभद्र में रिकॉर्ड किया। तो आइए सुनते हैं इस प्रश्न मंच के संपादित अंश को। स्थलीय ध्वन्यांकन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा।
1: आकाशवाणी उड़ा के माध्यम से आयोजित इस प्रतियोगिता में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से शुरुआत करते हैं। आकाशवाणी एक गौरवशाली 90 वर्ष की यात्रा को पूर्ण कर रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे युवा जो राष्ट्र के युवा होते हैं, वही प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। और आकाशवाणी का मोटो भी है, उद्देश्य भी यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय मतलब सभी के हित की बात जो करता हो और जो सबको सुख देता हो, यानी कि मनोरंजन की भी बात करता हो और जानकारी की भी बात करता हो, यही आकाशवाणी का उद्देश्य रहता है। और चूंकि आप यूथ हैं, कल को आपको देश का निर्माण करना है, देश के लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी की भी ये भूमिका रहती है कि वो आपको हर क्षेत्र में ट्रेन करता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फिर चाहे वो आर्ट हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आकाशवाणी के पास सारा मटेरियल रहता है कि वो आपको प्रोवाइड कराए। डे बाय डे आप उससे जुड़े। सोशल मीडिया तो आपको सिर्फ एंटरटेन करता है, ऐसा नहीं है, वहां भी आपको बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन यह है कि आकाशवाणी आपको विस्तार ज्ञान देता है और सबसे बड़ी बात, आपका काम डिस्टर्ब नहीं करता। आप एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, उस दौरान भी आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए आकाशवाणी से जुड़ते हैं, उसके कार्यक्रमों को सुनते हैं। तो चलिए फिर इस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हैं। दो राउंड में ये प्रतियोगिता होगी, जिसमें पहले राउंड में हम आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, जो हैंड राइज सबसे पहले करेगा उसको उस क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा। और दूसरे राउंड में हम क्या है कि हम आपके सामने कुछ पर्चियां देंगे, जिस पर्ची में कुछ अलग अलग टॉपिक्स होंगे और जो पर्ची आप सेलेक्ट करेंगे उसमें जो टॉपिक्स होगा उस पर आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा एक्सटेम्पोर बोलने के लिए। ठीक, क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो चलिए इस प्रतियोगिता के साथ मैं आशीष वर्मा और मेरे साथ हैं
0: रानी राजश्री।
1: इस प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन वर्मा जी। चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो हम पहले चाहेंगे कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो टीम ए में कौन कौन है, नाम बताइए।
2: हंसिका मेहरोत्रा,
1: क्लास
2: 11th।
3: आई एम उन्नति श्रीवास्तव, क्लास 11th।
1: वेरी गुड। टीम बी में कौन कौन है?
4: आई एम अल्फिजा, क्लास 12th।
5: मायसेल्फ अवेल त्रिपाठी, क्लास 11th।
1: वेरी गुड। टीम सी?
6: दिव्यांका चतुर्वेदी फ्रॉम क्लास 11th।
7: मायसेल्फ शगुन दीक्षित फ्रॉम क्लास 12th।
1: और टीम डी में कौन कौन है?
8: मायसेल्फ प्रगति माथुर फ्रॉम क्लास 12th।
9: Myself, Shinji Dutta from class 12th.
1: चारों टीमों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो चलिए फिर पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा,
0: ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है?
1: टीम बी,
5: 4 वर्षों के बाद।
1: 4 वर्षों के बाद, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अब
0: द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है?
10: टीम सी से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया जाता है, स्पोर्ट्स ट्रेनी टीचर्स को।
1: वेरी गुड,
10: सही जवाब,
1: राइट आंसर।
0: अच्छा, आकाशवाणी की बात चल रही है और आकाशवाणी का कार्यक्रम भी है, तो आकाशवाणी का दूसरा नाम क्या है?
1: टीम डी से इस आंसर की उम्मीद है,
9: ऑल इंडिया रेडियो।
1: यस, ऑल इंडिया रेडियो। ताली थोड़ी तेज बजाइए। और अगला प्रश्न ये रहा, ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय कहाँ पर है? टीम बी,
5: न्यू दिल्ली।
1: यस। और अब ये बताइए कि हेडक्वार्टर्स की बात करें, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? टीम डी,
9: बेंगलुरु।
1: बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न ये रहा,
0: शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? टीम ए,
3: 5 सितंबर।
1: बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था?
3: टीम डी,
9: लाल बहादुर शास्त्री।
1: यस, बिल्कुल।
0: हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? टीम सी,

0: सितंबर।
1: सही जवाब। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? टीम डी। टीम डी आगे चल रही है लग रहा है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर।
2: बैडमिंटन।
1: वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैडमिंटन के लिए साइना नेहवाल जानी जाती हैं। और किसको किसको इस प्रश्न का उत्तर मालूम था? किसने पहले हैंड राइज कर दिया, बस उसकी किस्मत। चलिए अगला प्रश्न ये है,
3: भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी?
1: एक हिंट दे दूं, उनके हेयर स्टाइल ऐसी थी।
3: हाँ।
1: तीन सी।
0: इंदिरा गांधी।
1: क्या बात है। चलिए ठीक है, और अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? टीम डी।
2: वंदे मातरम।
1: वेरी गुड, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसका सही जवाब दिया टीम डी ने।
3: आप सभी कंप्यूटर तो चलाते ही हैं, तो कंप्यूटर के जनक कौन है?
0: टीम सी। Sure, but Charles Babbage.
1: सही जवाब है। यही होता है कि अगर आप नॉट श्योर की फीलिंग के साथ अगर हैंड राइज नहीं करती तो ये प्रश्न का उत्तर रह जाता आपसे। ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है? टीम डी।
2: राजस्थान।
1: वेरी गुड, सही जवाब।
3: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किन्होंने लिखा था?
1: टीम डी।
2: बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय।
1: नहीं, गलत जवाब।
0: मोहम्मद इकबाल।
1: ठीक है, और अब ये बताइए कि कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
0: टीम बी।
1: बताइए।
2: सेवन।
1: सही जवाब।
3: अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
1: टीम बी।
4: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? क्या बात है।
4: 1983।
1: क्रिकेट से बहुत लंबा नाता है लग रहा है, खेलते हैं, फेवरेट गेम है। चलिए अच्छी बात है, और अब अगला प्रश्न आपके लिए ये है,
3: दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: पता है? चलिए टीम डी।
2: इन फिल्म्स।
1: फिल्म्स के क्षेत्र में, बहुत अच्छा। सिनेमा जगत के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? मन में जो भी आ रहा है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। नहीं, कंफर्म। इसका सही उत्तर है
3: पिंगली वेंकैया।
1: पता था? तो फिर वही तो करते, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आपको बताना चाहिए। आकाशवाणी आपको यही समझाती है कि अपने मन के डर को निकालिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, और आपके मन में जो भी आ रहा है आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखिए।
3: और इस राउंड का आखिरी प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है?
1: टीम बी।
2: नाइल रिवर।
1: चलिए जोरदार तालियां, और इसी प्रश्न के साथ हमारा पहला राउंड यहीं समाप्त होता है, और अब थोड़े से इंतजार के बाद हम फिर से आपसे मिल रहे हैं, जो हमारा अगला अंक है जिसमें हम आपको कुछ पर्चियां देंगे, आप एक पर्ची उसमें से सेलेक्ट करेंगे और उस पर आप जो आपको कहना है उस विषय के संदर्भ में आप आकर के उसको बताएंगे।
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: और अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर, जिसमें आपको कुछ पर्चियां दी जाएंगी। उन पर्चियों पे जो भी विषय, जो भी थीम आपको मिलेगी, उस पर आपको लगातार 2 मिनट के करीब बोलना पड़ेगा। आइए फिर जानते हैं कि टीम ए, टीम बी और टीम सी को जो

0: पर्चियां मिली हैं उनमें से किस थीम किस विषय के साथ वो कंफर्ट है, आइए जानते हैं इस बारे में। तो टीम ए, आप लोग को कौन कौन सा विषय मिला है?
1: आवर टॉपिक इज डू योगा एंड स्टे डिजीज फ्री एंड द सेकंड टॉपिक इज साइबर क्राइम।
0: आपका कंफर्ट जोन क्या है?
1: माय कंफर्ट जोन इज डू योगा एंड स्टे डिजीज फ्री।
0: वेरी गुड। टीम बी, आपको क्या टॉपिक्स मिले हैं बोलने के लिए?
2: एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग।
0: आपने क्या सेलेक्ट किया?
2: एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी।
0: बेस्ट ऑफ लक। सी टीम।
3: Yes, sir. So we have got two topics, like health is wealth and another is importance of radio. So I think that it is much more frequent for me to say on this importance of radio.
0: Best of luck. Team D.
4: Our topics are good and bad impact of social media and cleanliness.
0: तो ठीक है, चारों टीमों को उनके टॉपिक्स मिल चुके हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो भी टॉपिक्स है 5 marks का है, ठीक है। तो दूसरे राउंड के साथ सबसे पहले परफॉर्म करने आ रही है टीम सी, आइए जानते हैं टीम सी से कौन है।
5: गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शगुन दीक्षित फ्रॉम सेंट जेवियर दारा पब्लिक स्कूल दारा सोनभद्र एंड आई एम हियर टू से ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दिव्यांका चतुर्वेदी फ्रॉम क्लास 11th सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल दारा सोनभद्र एंड वी आर हियर टू गिव अ टॉपिक रेडियो का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो।
0: स्टार्ट करें।
5: मुझे आज रेडियो के महत्व पे बोलना है और मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं, जो भी इस दुनिया में क्रिएटेड है, एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड वी आर वेल अवेयर, बट स्टिल रेडियो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस, हैविंग इट्स प्रोज, लॉट्स ऑफ प्रोज बट वेरी लिटल ऑफ कॉन्स। Okay, so we first start with the introduction of radio. Radio was first established on 8th June 1936 in the British period, and it is a very classic and a unique method to give information and spread general awareness programs to the mass media. Okay, so we are well aware. As I said, it is at ये independence के time पे awareness के लिए था, तो हम ये भी जानते हैं कि रेडियो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि उस टाइम टीवीज नहीं थे और ना कि उतना सोशल मीडिया था, तो रेडियो प्ले करता था रोल मास मीडिया को एक साथ लाने के लिए, आज़ादी के प्रोग्राम में एक साथ रहें और उसमें बहुत परफॉर्म करें और इवन अपना बहुत बड़ा सहयोग दें। कई सारे लीडर्स को ज्वाइन करने के लिए रेडियो बहुत बड़ा महत्व अपना दिया था। और आज की जनरेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, बट जहाँ तक हम रेडियो को जानते हैं, रेडियो एक ऐसा बहुत अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू हमें ना कि कोई एडिक्शन है और ना ही लाइक कोई इससे दिक्कत है।
0: तो टीम सी से आप थी शगुन दीक्षित, जो इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो यानी रेडियो के महत्व के बारे में बोल रही थी, बता रही थी।
6: और अब हम आमंत्रित करते हैं टीम बी को।
7: जी, आपका टॉपिक
2: एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट एंड रेवोल्यूशन एवर टेकन इन इंडिया। एज वी नो दैट ऑनलाइन स्टडी इज वेरी अफोर्डेबल, द स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड इट कैन कम्पीट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जस्ट ₹3,000 to ₹5,000 विद अ पोर्टेबिलिटी दैट दे हैव टू गो नोवेयर इन द house itself, they can study and what they want, and with the remarkable point the teachers are choosable, we can choose the teacher which we are comfortable from, but वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इसी की तरह इसमें बच्चा धैर्यवान नहीं होता है, बच्चे के अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरे पास सारे resources पड़े हुए हैं, मैं कभी और कर लूंगा, पर ये ऐसा वो कभी हो नहीं पाता है। उसी के साथ आपको कोई कंपटीशन का माहौल नहीं मिल पाता है जो आपको ऑफलाइन स्टडी में मिलता है, पर यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी में आप फ्री टू स्पीक होते हैं, आप अपने कुछ भी कह सकते हैं, पर ऑफलाइन स्टडी में आप घबराते हैं टीचर से बोलने पे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसके साथ ही ऑनलाइन स्टडी में आपके ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, आपको कहीं जाना नहीं होता है, आप घर बैठे ही हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन स्टडी में प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट अच्छी नहीं होती है, बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसको टीचर टू टीचर का वो माहौल नहीं मिल पाता है जो उसको ऑफलाइन स्टडी में मिलता है। प्लस बच्चा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, बच्चा ये सोचता है कि मैं कर लूँगा पर उसके साथ ये कभी हो नहीं पाता है। इसी के साथ साथ बच्चे अपने पेरेंट्स को ये शो करते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं पर वो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चे डाउट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बच्चों का बैकलॉग बन जाता है, जैसे कि बच्चों के ऊपर एक स्ट्रेस रहता है और बच्चे ऑफलाइन और स्कूल में पिस जाते हैं।
6: और अभी इस टीम बी से अविरल त्रिपाठी स्पीच दे रहे थे, नाइस। और अब हम इस राउंड में आगे के लिए आमंत्रित करते हैं टीम डी को, आपका विषय।
7: आवर टॉपिक इज गुड एंड बैड हैबिट्स ऑफ सोशल मीडिया। Imagine a world where you don't have any WhatsApp, any Chrome, any Gmail, etc. Of course, it is much more painful for us to think of such a world, because in today's world, we are directly or indirectly connected to all sorts of social media. In fact, today, social media has become a basic necessity of life. Jahan hum office ke kaam, padhai, entertainment, movies, gana sunne se lekar news sunne tak bhi hum log सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। 21वीं सदी से पहले जब देश आज़ाद हुआ था या उससे ही पहले, लोग न्यूज़पेपर, रेडियो और ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तब के ज़माने में कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लोग को इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे और एक तरह से लोगों में कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी डिफरेंस थी। लेकिन आज 21वीं सदी में जहां हम लोग के पास मोबाइल्स है, लैपटॉप्स है, जो आज लगभग सभी के पास है और सभी इसका उपयोग करते हैं अपने हर एक काम को आसान बनाने के लिए, सोशल मीडिया के आने से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े प्रभाव डाले गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग को कोविड के टाइम में दिखा था। पूरी दुनिया में लॉकडाउन छा गया था, कोविड का हाहाकार मच गया था। उस समय लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए अपनी बिजनेस, अपनी एडुकेशन, अपनी मूवीज, अपने न्यूज़ देखने और सुनने के लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट थी। सोशल मीडिया के आने से बिजनेस के क्षेत्र में भी बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है।
6: और टीम डी से श्रृंजय दत्ता का बहुत बढ़िया प्रयास। और अब आ रहे हैं टीम ए से।
8: नमस्कार, मेरा नाम हंसिका मेहरोत्रा है और मैं कक्षा 11 की छात्र हूँ। मैं सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल टाला सोनभद्र में पढ़ती हूँ। हमारा आज का विषय है डू योगा एंड स्टे डिजीज फ्री।
1: सो फर्स्टली आई विल टेल यू दैट योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, और योगा जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की इतनी बिजी शेड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं है योगा करने का, पर सब लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं और उनके पास कुछ ऐसा तरीका नहीं होता जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री हो सकें। पर मैं आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों को योगा करना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोग स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। योगा हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। जैसे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे हम तनाव से दूर रह सकते हैं। जैसा कि आज के समय में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं और उसको ऐसे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद हम लोग उसका इलाज तो करवा रहे हैं पर बहुत से दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जा रहे हैं और उसे सही नहीं करा पा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है योगा करने का, पर हमें ज़रूर थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग सच में स्वस्थ रह सकते हैं। आजकल हर एज के लोगों को स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, बड़ों को अपने काम का स्ट्रेस है और इसी वजह से लोग बीमार भी रहते हैं। जितना ज़्यादा आजकल तनाव बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं उसे सही करने का। और लास्टली मैं आप सभी लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सब लोग बिजी ज़रूर हैं पर अपने लिए कम से कम अपने शरीर के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम ज़रूर निकालें।
0: एक चारों टीम परफॉर्म कर चुकी है, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, प्रेजेंटेशन भी बढ़िया था, कंटेंट भी अपने हिसाब से कम वक्त में आप लोग जितना लिख सकते थे लिखा और बहुत अच्छा प्रयास था। आप लोग इंतजार करिए और बस थोड़ी ही देर में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कौन सी टीम विजेता होती है, और प्रयास सभी का बहुत बेहतरीन था। इंतजार करते हैं, क्या लगता है कौन सी टीम विनर होगी?
1: टीम डी है।
0: टीम डी, टीम ए को अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है?
1: वो लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे।
0: बहुत अच्छा, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी बहुत अच्छी आदत है। तो चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग

0: रिजल्ट की तरफ आते हैं, अनाउंस करते हैं कि रिजल्ट विजेता टीम कौन है। तो वाकई विजेता टीम है टीम डी, जिसमें शामिल थी प्रगति माथुर और संजय दत्ता। कैसा लग रहा है विनर बनके?
1: बहुत अच्छा लग रहा है,
0: मेहनत सफल हुई।
1: यस सर।
0: चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको, आपको भी और बाकी जो तीनों टीमें थी, टीम ए, टीम बी और टीम सी, जो ये टीम थी, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। सबको बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: विद्यार्थियों ने पूरे मनोबल और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कई बच्चों ने कठिन प्रश्नों के उत्तर देकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। श्रोताओं, ऐसे कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता नहीं होते, बल्कि बच्चों के भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानने का माध्यम बनते हैं। इसी भावना के साथ सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल डाला सोनभद्र के प्रधानाध्यापक शंकर जी अपने विचार व्यक्त करते हुए।
3: मैं शंकर जी सिंह, प्रिंसिपल सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल डाला, आकाशवाणी ओबरा से आए हुए अधिशासी अधिकारी और टीम्स को बधाई देता हूँ कि सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल डाला में आकर के हमारे 12वीं क्लास 11वीं क्लास के बच्चों को जागरूकता अभियान, जिसमें क्विज कॉन्टेस्ट के रूप में देश से प्रदेश से अपने जो सांस्कृतिक विरासत है और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के विभिन्न रूपांतरण जो नाम है कार्यक्रम उसका है, उसके विषय में जानकारी दिए और बच्चों से इंटरेक्ट किए। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और अपने स्तर से उम्मीद से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और इस प्रकार ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए और उनके भविष्य में अच्छे नागरिक बनने के लिए एक अच्छा प्रयास है। इसलिए मैं पूरे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ओबरा के अधिशासी अधिकारी और टीम को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
4: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
5: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
6: हेलो,
4: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
5: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
4: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
5: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
4: ओनली ऑन AIR ओबरा।

और बहन लोगन बतावा, आप लोगन के से देखा कितना दिना बाद आज हमार भेंट मुलाकात होता। तो हम तो सबसे पहले ही जाने चाहब कि आप लोगन का हाल चाल कैसन बा। और देखा कहल गला ना कि जब पहले भेंट मुलाकात होला तो हाले चाल पूछल जाला ना कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक से हैं कि नहीं। वैसे तो देखा हमें यह उम्मीद बा कि आप सब ही लोगन कुशल मंगल से हैं, लेकिन देखा ये समय जोन गर्मी हो जोन घाम बा वो बहुत ही असहनीय हो। और ऐसे में हमन के कोशिश यह करे के चाहिए कि अपने घरे का काम धंधा जोन बा हो ओके देखा सांझी सवेरे में हमने निपटा ले, ताकि दोपहरिया में जोन माने तेज कल गल कि जोन धूप भाई 11 बजे से लेके जोन 4 बजे तक उनमें कोशिश यही करी कि घरे से बाहर ना निकली। अगर निकलत भी है कोई जरूरी काम से तो सबसे पहले पानी पी के भर पेट निकली और साथे साथे कपारे पे गमछा रख ली कि तो छाता ले ली। और एकरे अलावा भी देखा गर्मी से बचे खातिर और लू से बचे बदे अपन आम के पन्ना पी ली, बेल के शरबत पी ली, और साथे साथे जोन पानी वाला फल बा जैसे आपका खीरा हो गल, ककड़ी हो गल, हिरमाना बा, खरबूज बा, तरबूज बा, ये सब का भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करी। कोशिश यह करी कि अगर हम लोग ये सब के सेवन करल जाए तो देखा अपन स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और जब अपन स्वास्थ्य ठीक रही तबे हम लोग अपने घर परिवार के देखभाल कर पाईबला। और देखा साथे साथे जोन हम लोग बात बत कही करीला ओमे भी देखा मन लगी, और जानकारी भी जोन सुनल जाला ओमे भी देखा अपन जोन की मन नीक से लागेला। तो बहन लोगन देखा आज हमन के अपने बचवा के कल गले कि खेल और कूद से जोन दूर हो गलन, ये समय जोन मोबाइल बा छोट बचवन अगर मोबाइल पा जाथन तो देखा कल गला कि अगर खेले बदे भी भेजा तो बचवा ना जियन, वही मोबाइल में लगा दा छोट बचवन के तब खाना खाइन तब पानी पियन, अगर ना मोबाइल लगा के देबू तो बचवा रोए लगेन। तो कहीं ना कहीं हम लोगन की ही गलती है। और एकरे खातिर हम लोग जो माई बाप है देखा जिम्मेदारी अगर हमन के जोन है कि जागरूक हो गए अपने बचवा के लिए खेल कितना आवश्यक है इस पर ध्यान देवे की जरूरत बा। काहे से कि खेले से और सिर्फ मौज मस्ती से ही नहीं बल्कि बचपन के अगर ये सब खेल कूद में रही हैं तो देखा उनका शारीरिक और जो मानसिक विकास वो देखा बढ़िया से हुई। और देखा कल कल कि बच्चा के जो विकास के आधार होला वो पहले ही देखा शुरुआत में जो 3 वर्ष में आपके बचपन के दिमाग पूरी उम्र के तुलना में कहल गला ना कि ज्यादा विकसित होला। और ऐसे में हमन के लागेला कि खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए होला, लेकिन नवजात शिशु से लेके अगर 5 साल तक के बचपन के लिए ही आनंद से कहीं ज्यादा होला। और खेल से ही बचपन के समस्याओं का समाधान करना, अपने विचार के व्यक्त करना सीखेलन, और खेल से ही आप ही अपने बच्चे का पहला गुरु और पहला दोस्त होलन। काहे से कि बचवा के साथ खेलना परवरिश का आधार होला, और बचवन के साथे खेले से देखा उनके दिमाग का विकास भी अच्छे से होला। और बहन लोगन देखा एक चीज तो और कहें कि बचपन की जहाँ तक बात है तो होबे करला, लेकिन साथे साथे देखा अपने घर के काम धंधा के साथे साथे हम लोगन के हर चीज के चिंता फिकिर रहला कि अपने घर के जो न कि माने कितना आमदनी बा, कैसे खर्च करी और कैसे अपने घर के सब चीज के माने सिस्टम में रखी। तो जोन कहल गला कि सबसे ज्यादा तो खलेला बिजली के बिल, तो ओकरे खातिर देखा जोन प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है वो देखा हम लोगन के लिए सरकारी योजना बहुत ही लाभदायक है। और यही उद्देश्य बा कि देश के करोड़ों घर के सौर ऊर्जा से जोड़ी, और ये योजना के शुरुआत देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में कैले रहलन। और एकर यही मकसद बा कि घर के छत पे सोलर पैनल लगा के उसे बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनावल जाए। और बहन लोगन हमन के जौन हर महीना बिजली के बिल से अगर

राहत ली है और आप चाहे लें कि आपके बिजली का खर्च हमेशा के लिए माने खत्म हो जाए, तो देखा जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो मुफ्त बिजली की है वो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और देखा ई योजना से सरकार अब लोगन के उनके घर पे फ्री सोलर पैनल लगावे के में भी मदद करत हन, और ये प्रयास से आप अब खुद मुफ्त बिजली भी बना सकलन। कहे से कि भारत जैसे देश में देखा सूरज का रोशनी बहुत है, ये लिए यहाँ पे देखा पीएम सूर्य घर योजना देश के हर कोने तक सस्ती और साफ बिजली पहुँचावे की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। और देखा ये योजना के मुख्य लाभ ये है कि आपके हर महीना 300 यूनिट तक बिजली पैदा हो सके और छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी और अतिरिक्त बिजली बेच के कमाई का आसान प्रक्रिया भी है इसे। और पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करे खातिर आपके आवश्यक दस्तावेज जोन लगी हुआ देखा आधार कार्ड, बिजली का लेटेस्ट बिल, बैंक खाता, प्रॉपर्टी प्रूफ के जरूरत होला। और ई योजना के उहे व्यक्ति आवेदन कर सकेला जे भारत के स्थायी निवासी हो और खुद का घर और छत हो और पहले से सोलर सिस्टम ना हो। तो बहन लोगन देखा आज पूरी दुनिया जो ऊर्जा संकट से और प्रदूषण से जूझ रहल बा, तो ऐसने में प्रधानमंत्री सोलर योजना जो भारत का है ये देखा मन की एक नई दिशा दी। और साथे साथे आप लोगन के बता दें कि आज के समय में देखा ऐसा ऐसा बीमारी माने लग जातवा शरीर में जैसे कल गलन है कि माने शरीर भी खत्म हो जाला और साथे साथे पैसा भी खत्म हो जाए और अपन शरीर भी जो है अच्छे से बचा नहीं सकत आदमी। एकरे खातिर हमन के ये माने प्रण करे के चाहिए कि इलाज से बेहतर बचाव ज्यादा जरूरी बा। तो बहन लोगन देखा आज के समय में जोन बीमारी होए के बाद इलाज करावे से बेहतर बा कि पहले से ही हम लोग बचाव कर ली। और देखा जब शरीर स्वस्थ रही हमन के ना तो जोन बार बार डॉक्टर के पास जाए का जरूरत भी कम हुई और जैसे कल गल के मेडिकल खर्च भी कम हुई और जीवन का गुणवत्ता भी बेहतर हुई। और बहन लोगन देखा बीमारी से बचाव का सबसे आसान और असरदार तरीका यह बा कि खाना खाए से पहले जो न कि और बाद में हाथ के साफ सुथरा करी। और साथ ही हम लोग संतुलित भोजन में जो साग सब्जी हरा है ओके इस्तेमाल करी, प्रोटीन कैल्शियम विटामिन से भरपूर खाना खाएं और जंक फूड और तला भुना तेल मसाला से कोशिश यह करी कि बची। और साथ ही साथ नियमित व्यायाम भी करी और पूरी नींद भी लें। और नींद के कमी से देखा कल गल ना कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो ना कम हो जाला और तनाव से अगर माने कल गल की दूरी बना के रखे गए हो तो खुद के लिए अपन समय देवल जा, सकारात्मक सोच बना के रखी, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रही और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रही। और देखा आज हम लोगन के जोन माने बीमारी की अगर बात करत ही उससे बेहतर इलाज अपने पास खुद बा, लेकिन देखा जोन आज हम लोग जानकारी भी सुनल जाए ना बहन लोगन वो देखा बा जानकारी हमन के पास बा कि एड्स के प्रति जागरूकता ही बचाओ, एकरे बारे में जानकारी दी है ना अपन सुनील कुमार श्रीवास्तव भैया और इनसे बातचीत अपन जलेबी भौजी कैली ने कि सुनल जाए। लेकिन हम तो कह दी कि बात बत कही तो आगे होत रही और जानकारी भी सुनल जाए, लेकिन उससे पहले हम चाहती ला कि एक मन मनसायन हो जाए। तो अब चला बिना देर के लिए आप लोग भी और हम भी सुनी।

0: बहन लोगन देखा ही रल विवाह गीत श्रीमती लीलावती सिंह गौले रली ना, और गीत सुन के तो मन एकदम फरहर हो गल। अब जो ना कि जोन जानकारी हमन के सुनल जाए वो देखा बहुत ही अच्छा जानकारी, और जेकरे प्रति हम सभी लोग के जागरूक होए के चाहिए। तो एड्स के प्रति जागरूकता ही बचाओ। सुनील कुमार श्रीवास्तव जो परामर्शदाता मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से हैं, इनसे सुरसरी द्विवेदी अपन का बातचीत कैले हैं, अब चलाए के सुनल जाए।
1: साथियों, 18 मई पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व एड्स टीकाकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। उन हजारों वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वयं सेवकों को समर्पित है जो HIV यानी एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए एक वैक्सीन की खोज में जुटे हुए हैं। आज हम इस पर चर्चा करने के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोनभद्र लोढ़ी में सुनील कुमार श्रीवास्तव के साथ हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: चूंकि वैक्सीनेशन की चर्चा होती है तो सबसे पहले हम और आम जन के जहन में एक जो सबसे सामान्य सवाल आता है वो ये है कि पोलियो, चेचक और अब तो कोरोना की भी वैक्सीन आ गई है, फिर भी HIV की वैक्सीन में इतना विलंब क्यों?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम आपका। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आई, चेचक की वैक्सीन आ गई, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन पहले से ही आ चुकी हैं, लेकिन अभी HIV की वैक्सीन क्यों नहीं आई, इस पर थोड़ा सा हम आपको इस पर ब्रीफ करना चाहेंगे कि इस पे वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार वैक्सीन ट्रायल मोड में चल रहा है और उम्मीद है कि ये 1 से 1.5 वर्षों के बीच हमारे मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ये वैक्सीन 1 साल में 2 बार लगाई जाएगी, उन व्यक्तियों को लगाई जाएगी, उन मरीजों को लगाई जाएगी जो HIV की दवाएँ ले रहे हैं।
1: जी जी, यह भी एक अच्छी फतह है
2: जी
1: कि कम से कम जो HIV पॉजिटिव हैं, एड्स ग्रसित हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए
2: जी, ये वैक्सीन
1: आ गई है
2: जी।
1: ये एक अच्छी बात है क्योंकि यह बीमारी संक्रमण बीमारियों में आती है और एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे को होता है।
2: पर इस पर
1: आप हमें अच्छे से बताएंगे, श्रोताओं को बताएंगे कि कारण क्या है और क्यों फैलता है, कैसे ज़्यादा आजकल फैल रहा है?
2: जी, ये फैलने का कारण सबसे मुख्यतः 4 कारण हैं जिससे HIV का संक्रमण होता है। नंबर 1, कोई भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ट्रांसजेंडर हैं, किसी के साथ अगर असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उनसे HIV होने का खतरा हमेशा बना रहता है। नंबर 2 है, अगर कोई भी HIV संक्रमित सुई या उसके साझे प्रयोग किया जाए तो उसे HIV का संक्रमण बहुत तेजी से हो सकता है। जहाँ पे नीडल शेयरिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें इंजेक्टिंग ड्रग यूजर जो इंजेक्शन के माध्यम से नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं वो एक समूह बना कर आते हैं और वो जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों को वो संक्रमण हो सकता है। साथ साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है जो कि हमारे यहाँ अभी जल्दी ही केस भी पाए गए थे कि टैटू बनवाने से भी HIV का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है।
1: अच्छा, और लड़के लड़कियों के साथ साथ अब तो प्रौढ़ व्यक्ति भी हैं जो टैटू का शौक रख रहे हैं।
2: टैटू के शौक,
1: महिलाएं भी बढ़ चढ़ के,
2: महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, अब तो पूरे बॉडी पे भी वो अपना टैटू बनवा रहे हैं। तो मुख्यतः कारण यही है कि हम नीडल शेयरिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मॉल हैं, उनके यहाँ जब जाते हैं तो टैटू वाले हमेशा उपलब्ध रहते हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: तो कहीं न कहीं वो एक ही नीडल का बार बार प्रयोग करते हैं जिससे ये इन्फेक्शन HIV का होने का खतरा हमेशा बना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तीसरा कारण ये है कि HIV संक्रमित ब्लड या उसके उत्पाद से, अगर कोई भी HIV संक्रमित रक्त किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उसे HIV का संक्रमण 100% निश्चित है। या अगर ब्लड से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाता है तो हम लोग प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तो वो भी

0: ब्लड का ही उत्पाद है, रक्त का ही उत्पाद है, तो अगर वो भी एचआईवी संक्रमित है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को भी एचआईवी संक्रमण होगा। तो ये हमने तीन कारण आपको बता चुके हैं। चौथा और लास्ट जो कारण है, कोई भी एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिलाएं हैं उसके द्वारा अगर होने वाला बच्चा है तो मे बी कि उसका भी बच्चा भी एचआईवी संक्रमित हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये मुख्यतः चार कारण फैलने के हैं। इसके साथ ही हम संक्षेप में बचाव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें फैलने की कारण नहीं पता होगा तो हम अपना बचाव नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हर व्यक्ति को एचआईवी संक्रमण के बारे में पता होना चाहिए कि किस कारणों से फैलता है, तभी वो उसका बचाव कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है बचाव का, बिल्कुल वो घर में उपयोग कर सकते हैं। कहीं उनको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 1097, उस पर वो फ़ोन करके एचआईवी से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई संदेह है किसी प्रकार का। सारे जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ICTC के नाम से एक सेंटर भी स्थापित किया गया जो संचालित किया जाता है। वहाँ पे एचआईवी की परामर्श की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं, एचआईवी के मुफ्त जांच उपलब्ध है और इसका ट्रीटमेंट भी मुफ्त है। ये पूरा पूरा भारत सरकार की ओर से सब कुछ निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डोर टू डोर जाकर के कैंपेन किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। कॉलेजों में जाकर के हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, इंटर कॉलेज हुए, डिग्री कॉलेज हुए, ग्रामीण प्रधानों के माध्यम से जाकर के हम लोग संपर्क करते हैं और उनको भी एचआईवी के बारे में अवेयर करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, टीकाकरण, फैलने के कारण, बचाव। अब इसमें जो सबसे अहम बात आती है कि कोई व्यक्ति कैसे इस बात को समझ पाए कि वो एचआईवी ग्रसित है, मतलब इसके ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको देखने के बाद तत्काल हमें उपचार और परीक्षण में लग जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एचआईवी संक्रमित।
1: यस।
0: तो इसका मुख्यतः देखिए जो लक्षण होते हैं, सामान्य सभी बीमारियों में एक जैसे ही लक्षण होते हैं। इसमें खास दो लक्षण मुख्य रूप से होते हैं कि इसमें वेट लॉस बहुत तेजी से होता है, जो भी अगर एचआईवी का संक्रमण होता है, वजन का गिरना बहुत तेजी से होता है, लगातार बुखार आना। हम दवा तो कर रहे हैं पर जब तक दवा का असर है तब तक ठीक है, फिर जैसे ही दवा हम छोड़ते हैं फिर वो रिपीट कर जाता है बुखार। लूज मोशन, डायरिया बार बार होता है। तो ये मुख्यतः दो कारण हैं। बाकी और सामान्य लक्षण हैं, शरीर पे रेसेस होते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, इचिंग होती है, कुछ लिए इंटरनल पार्ट्स में दाने हो जाते हैं, कुछ लोग दांत के नाम से भी कहते हैं, कुछ लोग फुल्ली के नाम से भी जानते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में लोगों का प्रयोग है करते हैं, लेकिन ये सामान्यतः कहीं ना कहीं एचआईवी के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का किसी व्यक्ति को अपने शरीर में दिखाई देती है, समस्याएं समझ में आती हैं, तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, अपनी समस्या को अवगत करा कर चिकित्सक से परामर्श लेकर के एचआईवी की जाँच कराएँ। और अगर आप ICTC सेंटर में डायरेक्ट आते हैं तो वहाँ पर परामर्शदाता आपको बैठे रहते हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और आपको एचआईवी के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और निःशुल्क जांच कराने के बाद अगर उसमें कोई एचआईवी का संक्रमण पाया जाता है तो उनकी तत्काल एचआईवी की दवाई ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है।
1: जी जी जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को तत्काल अपने निकटवर्ती चिकित्सालय में जाकर संपर्क करना चाहिए। चलते चलते हम आपसे एक संदेश चाहेंगे। दुर्भाग्यवश जो HIV पॉजिटिव एड्स ग्रसित लोग हैं उनके लिए कि कैसे वो अपने को सुरक्षित रखें, उनके खान पान, उनके इलाज, इस संदर्भ में
0: अपने आप को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। अगर हमें HIV फैलने के कारण पता है तो वही हमारे बचाव के कारण भी
1: जी।
0: जैसा कि मैंने पहले ही आपको चार फैलने के कारण बताए हैं, वही हमारे बचाव भी हैं। अगर कोई भी हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करते हैं तो हमेशा उनमें कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है जो सिरिंज साझा प्रयोग होता है, हम उससे बचें, हर बार नए सिरिंज का इस्तेमाल करें, टैटू बनवाने से बचें।
2: बहन लोगन देखा ही रहला जानकारी, एड्स के प्रति जागरूकता ही बचाव। ओकरे बारे में जानकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव जोन परामर्शदाता मेडिकल कॉलेज सोनभद्र से रहला न, अपन जलेबी भौजी इनसे देखा फरिया फरिया के बतियोली न। और उम्मीद है कि हम लोगन के ये जानकारी सुनल भी गईली

बहन लोगन देखा मन मनसायन तो माने सुनल जात हला, लेकिन साथे साथे आपके बता दें कि इस समय जोन माने कल कल की हीट स्ट्रोक से कैसे बचल जाए, तो एक बदे देखा जोन एक गंभीर स्थिति बतावल जाला। एमे दिमाग के किसी भी हिस्सा में जोन की रक्त का प्रवाह रुक जाला और स्वस्थ जीवन शैली के अगर अपनाव के बाद तो नमक और चीनी का सेवन कम करके नियमित व्यायाम और बीपी और मधुमेह के नियंत्रित करके हीट स्ट्रोक से बचल जा सकेला। और साथे साथे हम तो यही कहला कि अगर हम लोग के अगर स्वस्थ रहे के जो ये बात होला इस पे हम लोग के यही सब पे ध्यान देवे की जरूरत है। और एक चीज आपके बता दें चलत चलावत की जो न कि जो गर्मी होला इनमें कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और जो न कि पानी वाला फल खाएं। और देखा अब अपन बैठकी समेटे का समय हो गया, तो सब बहन लोगन से अगले बैठकी में फिर भेंट मुलाकात हुई। तो सब बहन लोगन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारन के साथे हम वेद प्रकाश पाठक। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामे में आज करीब 90 पैसा प्रति लीटर का बढ़ोतरी कैल गई हो। एगो रिपोर्ट।
1: यह एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक जगहिन से पकड़ल गई लावारिस कुत्तन के टीकाकरण चाहे नसबंदी के बादे वापिस न छोड़ले के अपन पहले के निर्देश के वापिस लेले से मिनहा कह देले हो। प्रस्तुत बा एगो रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल नॉर्वे का महामहिम राजा हेराल्ड पंचम के ओर से ओइजा का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस दिहल गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतही कई गो ओरियो मंत्री काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कैल गेले पर बधाई देना है। केंद्रीय गृह मंत्री कहना कि ई 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई के विस्तार का प्रतीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि धरती माता खातिर पूरा मानवता एगो परिवार हो। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करत प्रधानमंत्री कहले कि पूरा दुनिया एगो घर के तरियन हवे जहां हर संस्कृति का आपन महातम आ सम्मान बा। भीषण गर्मी आ लूह के असर से गोरखपुर आयकरे लगे के पूर्वी जिलन के सतही करीब पूरा प्रदेश में जनजीवन प्रभावित बा। मौसम विभाग के ओर से ए हफ्ता 21 मई ले गर्मी के साथे साथे भीषण लूह का रेड अलर्ट जारी कर गेल बा। हमारे संवाददाता बतौलन कि राज्य में बांदा जिला 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसर को दिन सबसे गर्म जगह रहल।
3: बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय आयुष मंत्रालय ढेरे गर्मी आ लूह के हालत से निपटे बदे काल ही पुरहर जन स्वास्थ्य परामर्श जारी कैलस। एगो रिपोर्ट।
4: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी इलाकन में 21 मई ले मौसम शुष्क रहने के साथ ही तेज सतही बेरियो चलने का संभावना जतौले बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचम के राम राम।
1: गौरी भौजी तोके भी राम राम।
2: जग्गू भैया आपके भी राम राम।
1: का हाल चाल बा
2: भैया? देखा हाल चाल एकदम बढ़िया बा जग्गू भैया। और हम लोग सही समय से जुट गए जब पंचायती एक बार आज फिर लग गए।
1: लेकिन एक चीज जाना,
2: हाँ,
1: कि पंचायती लग गल हमन जुट गयी जा, लेकिन जब आवत अली हजा,
2: हाँ हाँ,
1: तो संझा बेला भी ढेर आँच लगत रह, बुझात रहल न। और देखा दिन में कितना ज्यादा घाम होत बा, समझ ला गरम हवा भी चलत है। अब भैया गरम हवा जवन शरीर का पानी सोखेला खींचेला।
2: हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसे में का है ना जग्गू भैया कि काम धाम तो कर ही के बा हमन के, चाहे घरे का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे बाग बगीचा का हो, अच्छा है तो बाजार हाट का हो, चाहे नेवता हकारी हो, काम तो काम है।
1: बिल्कुल।
2: ऐसे में हम लोगों ने अगर बाहर निकल जाए तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल बहुत रखा जाए।
1: बहुत जरूरी है, कहे से कि भैया जान है तो जहान है, एक बात कहल जाला ना।
2: हाँ।
1: और समझला कि भैया देखा होला का ना कि भैया इलाज से बेहतर बचाओ। भैया हम कहे के बीमार हो के अपने शरीर के नुकसान पहुँचाई,
2: बिल्कुल
1: भैया हम बचाव के साथ रह।
2: हाँ।
1: तो भैया शरीर स्वस्थ रही जो हम मेहनत से 2 रुपया बचावत है कमात है, भैया बाल बच्चा परिवार गृहस्थी में लगत हो आगे बढ़े का काम।
2: हाँ,
1: करें।
2: हाँ, हाँ। अपने के कैसे बचाई है? खूब पानी पिए, बहुत जरूरी है कि ढेर सारा पानी, अब जितना गिलास गिलास पी सकते हो पिए, और साथ में ताजा भोजन जरूर करें, बासी भोजन से बचें। और ये समय देखें कि मौसम जो कहला प्रकृति भी हम लोग के मौसम के अनुकूल हर चीज, अपने शरीर के अनुकूल हर चीज दे देला अपन धरती माता। जैसे ककड़ी है, तरबूजा है, खरबूजा है, दही है, लस्सी है, इकुल का सेवन जरूर करें।
1: गौरी भाजी एक बात जनिया।
2: हाँ हाँ।
1: प्रकृति हमेशा अपन संतुलन बनावत रह।
2: हाँ हाँ हाँ।
1: और प्रकृति हर मौसम के हिसाब से मानव बदे, चाहे साग सब्जी के बात करा, चाहे फल का बात करा, चाहे जवन है तू कौनो भी चीज का बात करा। जैसे कबूल कबूल तू देखा बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाले, बहुत ज्यादा धूप हो जाला, तो देखा आंधी आवेले।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: पानी आ जाला।
2: बिल्कुल।
1: और आंधी अगर आयल तो समझ ला कि आधा गर्मी खत्म,
2: धीरे धीरे कम हो जाता,
1: खत्म हो जी।
2: हाँ, हाँ।
1: और गर्मी के दिन में प्रकृति हमके जैसे खरबूज का तरबूज का बात।
2: हाँ,
1: के लो पानी वाला फल होगा।
2: हाँ, हाँ,
1: देत बा। अब तो मान ला युग जमाना बहुत बदल गल, हर मौसम में हर चीज मिले लगल।
2: हाँ,
1: लेकिन देखा जवान सब अब गर्मी का में गोभी का सब्जी अगर खाए के रह तो देखा सवाद मिली गोभी का, मतलब जड़ है।
2: हाँ, हाँ, तो आप कहानी सही है जग्गू भैया कि 12 मासी हो गए, आज जबकि जब मौसम के हिसाब से उगावल जाला ना तो ओकर अलगे कह जाला कि मिठास है, सुगंध है, अब मौके पे मिले ना तो ओकर ज्यादा कीमत भी रहत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब गर्मी के दिनन में जैसे भैया ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करा।
2: हाँ।
1: भैया घरे में चना बाय जौ भी बाय, जौ का तासीर ठंडा होले भैया
2: सतुआ बना के पिए,
1: सतुआ पीला।
2: हाँ,
1: हाँ। बेल है।
2: हाँ।
1: भैया ओके पिया, बेल कितना फायदेमंद शरीर बदे।

0: यह भैया बेल का पत्ती जो है ना शिव जी के चढ़ावल जाला, कहीं ना कहीं देखा अध्यात्म में भी ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ल हुआ।
1: बिल्कुल
0: कि भैया बेल के ये बदे जियावा बढ़ावा कि भगवान के भी काम आवे और मानव के भी काम आवे, और जवन बेल है समझ ला ओकर शरबत अगर तू पी ले लू बेल के खात हो तो समझ ला कि पेट संबंधी समस्या जैसा डॉक्टर भैया कहे
1: हाँ, हाँ।
0: भैया नहीं रह ले और तासीर एक बहुत ही ज्यादा ठंडा रह ले, और जैसे गर्मी में होला का कि भैया खाना पीना आदमी खेले बस कब्जियत का शिकायत होले, बेल ओल का रस पी लेला आम का पन्ना पी ले, कब्जियत का चीज नहीं रहत शरीर में,
1: पेट बढ़िया रहता
0: है। हाँ, और जब पेट साफ है तो भैया हर भोजन कायदे से पचत बा, धुआइन ढेकार नहीं आवत बा, शरीर तनमन बा, पाचन शक्ति
1: बिल्कुल पाचन शक्ति मजबूत बा, बढ़िया बा, और पेट आपका स्वस्थ बा।
0: लेकिन खाली खैले पियले से ही नहीं, अब खा अखटिया धे के लोटा भैया, हाथ गोड़ चलावा, शरीर चलावा, बाल बचवा हुआ, खेले कूद है। आज के बाद देखा स्कूल भी बंद हो गए।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: आज के बाद स्कूल बंद हो गए
1: 20 तारीख से।
0: हाँ, तो भैया जब स्कूल बंद हो गई तो अब बचवा लोग का करी हा? आगे का तैयारी करी हा? और खेल कूद में अपन रुचि बढ़ी है। बहुत बचवा लोग ऐसा भी हुआ गौरी भौजी,
1: हाँ, हाँ।
0: जिनकर खेल में रुचि ज्यादा होला था, अब तो स्वतंत्र हो गया भैया, दोपहरिया में बचा के सवेरे संझा अपन तू खेला कूदा प्रैक्टिस करा, आगे बढ़ा, देश का नाम रोशन करा, गांव का नाम रोशन करा, माँ बाप का नाम रोशन करा।
1: जग्गू भैया हम यही बतिया के आपके आगे बढ़ावत है कि जैसे हम लोग कह लिए जाना कि मौसम के अनुकूल अपने मतलब कहले खाना में भोजन में आहार में शामिल करें, हर भोजन पौष्टिक आहार जोड़ने से आपको प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, जन्म दूध दही लस्सी सलाद फल फूल, और ऐसे ही जन अपन बड़बार बचपन होते हैं किशोरावस्था में बचपन है या फिर युवा अवस्था में 20-22 साल का हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, सब भैया बहनी के सपना रहेला कि डॉक्टर बने, बिटिया बेटवा टीचर बने, वकील बने, जज बने, तमाम तरह का रहेला मन में। लेकिन अगर अपन बचपन के रुझान खेल की तरफ हवे तो आप उनके खूब पौष्टिक आहार दें और खेल कूद में उनके आगे बढ़ावे, अगर अपन बचपन के रुचि है।
0: बिल्कुल, कहे से कि खेल कूद जब बचवा लोग खेला ना कूदा ना
1: हाँ।
0: तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का मात्रा ज्यादा शरीर के चाहे ले, प्रोटीन जब मिली तो शरीर जवन है शरीर का मात्रा जवन है अपने एनर्जी के जेके ताकत के कहल जाला कि शरीर अपन ओके ओके मेंटेन कैले रहेला, अब बचवा लोगन का ताकत बरकरार रहेला।
1: बिल्कुल,
0: और आज यही तरह का एक जानकारी समझला कि हम पोटरी में लेके भी आले या तोहूं ले ले हूं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: का कुछ जानकारी है तनी पंच भैया लोगन के फरियाए के बाचा।
1: जगह भैया विश्व निष्पक्ष खेल दिवस तो ये दिवस का जो है मतलब खाली ई नहीं बा मनोरंजन नहीं है, खेल साधन भर खाली मनोरंजन का नहीं है, बल्कि ई समुदायन के बीच पुल का कार्य करत है, विभिन्न संस्कृति और विचार धारा के बीच अनुशासन धैर्य और आपसी के आपस के जो
0: भाईचारा
1: सम्मान के बढ़ावा दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारा के भी बढ़ावा देला।
1: हाँ।
0: तू देखा खेल खेल में चाहे वो कौनो जाति धर्म मजहब से लोग हो,
1: हाँ।
0: भैया जे वो रुचि में बाय फील्ड में सर्वधव बराबर है,
1: तो एमन भेदभाव ना होता है, सबके साथ है, और हमेशा जो हम कह जला कि जे आगे होके जेकरे में काबिलियत होके ओकरे साथे हम लोग के हमेशा जो है मने सहायता करे के चाहिए ओकर,
0: अब
1: ताकि आगे बढ़ सके निष्पक्ष
0: खेल तो यहाँ ले सिखावेला कि तू देखा कभी कभी भैया लोग खेल कहीं मैच खेलत हुआ अब भैया जूता का फीता खुल जाला तो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, दूसर का भैया दौड़ के जाना और ओकर फीता बांट देना।
1: हाँ, हाँ।
0: ई एक बहुत बड़ी भाव बहुत बड़ा भाव होला,
1: प्रेम है, भाईचारा।
0: बिल्कुल, तो आज यही तरह के एक जानकारी भी अपने पजरे है।
1: बिल्कुल, तीरंदाजी एक पारंपरिक खेल, सुमंगला शर्मा एक तीरंदाजी कोच है, उनसे अपन जो है सुरसई द्विवेदी बहन बातचीत कैले हैं,
0: तो का कुछ बातचीत कैले हैं एक सुनल जा आ कुछ संदेश है।
1: हाँ।
0: तो देखा ऐसा है ना,
1: हाँ, हाँ।
0: कि संदेश के सुनले के बाद तभी जानकारी सुनल जाए।
1: हाँ, सुनल जाए।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: साथियों सोनभद्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है आदिवासी जनों में शिक्षा की कमी है और जागरूकता की विशेष कमी पाई जाती है आदिवासियों के उत्थान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के बीच उनके खेल के गुणों को निखारने के लिए सोनभद्र स्थित 13 विशिष्ट स्टेडियम है जहां बच्चों को बालक और बालिकाओं को तीरंदाजी के अभ्यास कराए जाते हैं और सौभाग्य से यहां से बच्चे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और स्थान भी हासिल करते हैं आज हमारी मुलाकात यहाँ की तीरंदाजी की कोच ओलंपियन श्रीमती सुमंगला शर्मा जी से हो रही है तो सुमंगला जी नमस्कार
2: नमस्ते जी आप सभी का धन्यवाद
1: सुमंगला जी आज हम बात करते हैं इस स्टेडियम में तीरंदाजी को लेकर बालक बालिकाओं की प्रतिभागिता की पर उससे पहले ओलंपिक खेल जैसा कि आपने प्रतिभाग किया है उसमें तो महिलाओं की कितनी रुचि रही है
2: खेलों में महिलाओं की रुचि पूर्व काल से ही है हम लोग देखें तो कभी पीटी उषा का नाम जानते थे सुनते थे अखबारों में हमारे से बहुत पहले की वो हैं ओलंपियन जिन्होंने भारत देश का प्रतिनिधित्व किया था तो उन्हीं को हमने भी समझा कि मतलब क्या होता है खेल होता क्या है और ओलंपिक जैसा गेम उसमें एक प्रतिभागिता या फिर उसमें मेडल प्राप्त करना वो क्या होता है तो जब हमने खेला और उससे जाना कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने देश को वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं हम अपने देश का तिरंगा जब हाथों में लेकर चलते हैं तो हमारे अंदर वो जोश जुनून और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है
1: बिल्कुल सही कहा गया है कि एक सच्चा प्रेरक किसी व्यक्ति को उसके सपने साकार करने के लिए हौसला देता है
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने
1: आपने ओलंपिक में कब और किस खेल में प्रतिभाग किया था
2: मैंने ओलंपिक में 2004 एथेंस में प्रतिभाग किया था मेरा गेम तीरंदाजी था जो कि 1972 में ओलंपिक में शुरुआत हुई और भारत देश की टीम 2004 में 32 सालों के बाद प्रतिभाग करने के लिए पहली बार एथेंस के लिए रवाना हुई
1: यह तो आपका सौभाग्य है कि जब ओलंपिक में खेल शामिल होने के बाद भी प्रतिभाग करने का जब प्रथम दौर था तब आप उसमें प्रतिभाग किया आज यहाँ स्टेडियम में हमारे जनपद के ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद से भी प्रतिभावान बच्चों को चयन करके प्रवेश दिलाया जाता है तो यहाँ चयनित बच्चों के कुछ संख्याएं निर्धारित होंगी उन्हें चयन हेतु कुछ निर्देश होंगे पात्रता की शर्तें होंगी वह क्या हैं
2: जैसा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एकमात्र छात्रावास चल रहा है बालक और बालिकाओं का उसमें प्रवेश पाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई हैं उसमें आपकी जो उम्र है वो 15 साल के बीच में होनी चाहिए आपकी हाइट 5 फीट से ऊपर होनी चाहिए आपका वेट भी निर्धारित है जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपका यहाँ पर एक फिजिकली टेस्ट होता है और एक स्किल टेस्ट होता है जो कि आपके गेम से रिलेटेड होता है तो उन में जब आप प्रतिभाग करते हैं और आपका जो स्कोर होता है तो उस स्कोर को आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका चयन हो जाता है आपको जो जितने भी प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ी आते हैं उनमें रैंकिंग बनती है उस रैंकिंग से उन बच्चों को यहाँ पर रख लिया जाता है छात्रावास में ट्रेनिंग करने के लिए
1: तो यहाँ

0: यहाँ जो बच्चे रखे जाते हैं
1: जी,
0: जिन्हें ट्रेनिंग के लिए प्रवेश दिया जाता है, उनके लिए शुल्क इत्यादि के क्या प्रावधान हैं?
1: ये सरकार के द्वारा मानित शुल्क है। जो बच्चा प्रथम बार आता है उसको 2500 रुपये जमा करने होते हैं डिपार्टमेंट में। जब वो जाता है, यहाँ से पास आउट हो जाता है, तो वो उसको दे दिए जाते हैं वापस
0: जी।
1: वो सिर्फ उसके हिफाजत के लिए या जो भी कहें उसके लिए उससे लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तीरंदाजी का प्रशिक्षण एकदम निःशुल्क दिया जाता है और सरकार द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कोच रखे गए हैं। एक और कोच है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय है और मुझे ओलंपियन, मैं ओलंपियन हूँ उस बेस पे यहाँ पर, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तीरंदाजी के क्षेत्र में यहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर भारत देश में अपना नाम रोशन करें। यहाँ से सीख करके बच्चे विदेशों में जाएं और वहाँ पर तिरंगे का मान रखें।
0: बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए आवश्यक है कि एक पारंगत प्रशिक्षक उनके अंदर प्रतिभा से धनी जो छात्र हैं, खिलाड़ी हैं, वो जब प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से तमाम खेल प्रतिस्पर्धाओं में अपने मुकाम हासिल करते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। इस समय जो हमारे बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो कैसे कैसे किस स्तर के खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं?
1: मुझे यहाँ पर 2 वर्ष हो गए हैं और जिन बच्चों को मैंने अभी सिखाना शुरू किया था वो बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो लेवल के थे
0: जी।
1: अभी उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू किया है। उनमें से 7 बालिका और 5 बालक नेशनल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुके हैं। अभी पिछले ही महीने जो प्रतियोगिता हुई थी लखनऊ में, वो मिनी सब जूनियर हुई थी, यहाँ का बालक प्रथम स्थान पर था और बालिका द्वितीय स्थान पर रही और उन्होंने जाकर नेशनल में प्रतिभा किया। नेशनल में उनका 10वां रैंक था और बच्ची का 27वां रैंक था। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर था कि इन बच्चों ने उस बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रतिभा किया और अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा रखा। इस 13 स्टेडियम में जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वो बच्चे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। उन बच्चों को रहने से लेकर इक्विपमेंट की सारी सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पर तीरंदाजी सीखना चाहे तो सीखने के लिए आ सकता है।
0: जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोनभद्र के आदिवासी धनुर्विद्या को प्रकृति प्रदत्त अपने अंदर प्राप्त करते हैं, ऐसे में 13 स्टेडियम और आप जैसे प्रशिक्षक एक कुशल और भारत को एक विशेष पहचान दिलाने वाला खिलाड़ी जन्म देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए।
1: धन्यवाद, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सभी को इस जगह पर आने के लिए आवेदन करती हूँ, नम्र निवेदन करती हूँ। आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराइए, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी का यह संदेश हमें जन जन तक पहुँचाना चाहिए, जिससे कि इससे 2 फायदे होंगे। आपका मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप जो चाहें, जो पाना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर बातचीत के लिए।
1: नमस्ते जी।
2: गौरी भौजी,
3: हाँ।
2: देखा अपने सुरसरी बहिन जवन है सुमंगला शर्मा बहिन से बातचीत करतनी है। तीरंदाजी एक पारंपरिक खेल,
3: हाँ।
2: देखा तीर धनुष तो भाई अपन अंचल में आर्मी चलते रहा,
3: पहचान है,
2: पहचान है
3: अपने अंचल की पहचान।
2: गोली खेले भैया हमारे छोट छोट रह जा, गोली खेली जा तो उम्मे जवन है भैया निशाना लगाई जा, गदिल्ली खेली जा तो वह में निशाना लगाई जा, तो भैया वो पहचान। जैसे अब बहन बतौनी है कि भाई अपना जेकर रुचि हो वो आवे और अपन प्रशिक्षण ले,
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: दुनिया का नाम रोशन कर। और अब हम जब जानकारी सुन ली जाए ना तो मनसायन हो जाए।
3: एक धन्यवाद बना था एक मनसायन के साथ,
2: हाँ।
3: तब परशुराम उनके साथी गांव एक दहेज गया था, सुन लिया
2: एकदम सुन लिया।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गौरी भौजी, देखा जो ना परशुराम यादव संघाती भैया के एक दहेज गीत सुनल गल, साथ में कुछ संदेश रहा, लेकिन घड़ी के सुई सारा करत बा। कार्यक्रम के जा समेटल जा, चला चला के सब पंचन के राम राम, राम।

0: अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जय किसान। गौरी बहुजी,
1: हाँ जगू भैया,
0: लेका बसुरी तो बज गल, हमन जुट गईली जा जोन आपन कार्यक्रम हुआ है।
1: हाँ,
0: किसान वाड़ी का हाल चाल बा?
1: मेरा हाल चाल तो कुल बढ़िया बा, लेकिन जोन लुआर चलत बना जगू भैया के गरम गरम थीकल थीकल बा, मने जैसे लगो तक पूरा धरती गरम बा। ऐसा में देखते हैं हम आपकी भाई काम धंधा, तो काम धंधा बा, चाहे वो घर का हो, द्वार का हो, खेती का हो, किसानी का हो, गुरुवारी का हो, बागवानी का हो, काम तो काम है।
0: बिल्कुल सही बात कहलो गौरी भौजी, लेकिन एक बात समझ लिया।
1: हाँ,
0: कि 33% जवन है पेड़ पालो से आच्छादित अपन धरती माई हो के चाहिए।
1: हाँ,
0: जवन आज कम है, जवन आज मौसम का मिजाज देखत हो कि तापमान कितना पहुंच जात बा। भैया मास्टर भैया कहना भैया 40 डिग्री हो गल, कोई कहला भैया 45 हो गल, कोई कहत भैया 46 हो गल।
1: हाँ, हाँ,
0: कोई कहत 42 हो गल। अरे भैया इतना काहे होत है?
1: हाँ,
0: एहू पर विचार करो तो कहीं न कहीं पेड़ पालो हवा के बहाव है ना, जोन ओजोन का परत है ओके मोट कर है ना। और सबसे बड़ी चीज ये होले कि वातावरण के भी शुद्ध कर है ना। तो गौरी भौजी एक बात जनिया कि पेड़ पालो यह तापमान के भैया बैलेंस करे में, कंट्रोल करे में भी बहुत बड़ा भूमिका अदा कर है ना। तो असों तो जोन भयल तो भयल, लेकिन भैया आवे वाले दिन में भैया हम के ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगावे के है।
1: बिल्कुल, आई प्रकृति का देहन जो कह जला की पूजी है, धरोहर है, तो कहाँ तक तो हम लोग जगह संजोए के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन का है अब का करिए आप, जो है अंधाधुन जो पेड़ पालो की कटाई हुई तो प्रकृति जब नाराज हुई है तो ये कुल हुई जन पर्यावरण में असंतुलन हो गया बा।
0: बिल्कुल,
1: जब बारिश हो चाहिए तब गर्मी बा, गर्मी में फिर बारिश बा, है सर्दी कुछ ज्यादा ही बा, गर्मी खूब ज्यादा ही बा। तो हम लोग के अब से भी सचेत भइला का आवश्यकता है। अभी समय चलते बाटे, ये समय ही योजना बना लें कि आए वाला समय में हम लोग को कितना पेड़ पौधा लगावे के बा, कहाँ कहाँ लगावे के बा, कैसे लगावे के बा।
0: भैया गड्ढा का खुदान कह दे और जब बरसात आवे तो भैया अपना पेड़ पौधा लगाए के ओके जियावे। और गौरी भौजी देखा एक बात और कहल चाहती, भैया इस समय काफी लुआर और तेज धूप है।
1: हाँ,
0: भैया ऐसे बचे के है, अपने लैकन गदेलन के बचावे के है। अब भैया जौन अपन मवेशी हुआ हो, अनबोलता जीव, भैया उनके भी ध्यान देवे के है। अब भैया देखा चिड़ई चुनमुन ये प्रकृति का सिंगार हुआ, समझला के छते पर, दुआरे पर, नदी में पानी भर दा भैया, वो आए के बेचारे पिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बाल्टी में पानी धर दा, नदी में पानी धर दा, कोनो कटोरा डोंगा होके तो वहाँ पानी धर दे ताकि चिड़िया पी सके,
0: पिया या जिया।
1: दाना डाल दे, चावल डाल दे। हम तो देखा चीटियन के लिए जो है चीनी भी रख दे करीला, सरसों रखीला कबूतरन के लिए, ताकि सबकर आहार है और सबकर जो हक है, अधिकार है कि सब मतलब खाए और सब सुरक्षित रहे, सब जीवित रहे।
0: गौरी भौजी यो बात जानिया, ये प्रकृति में जितना जीव जंतु हुआ सबकर जरूरत यह धरती माई पे है।
1: बिल्कुल, अधरती माई पूरा करे लेन, अधरती माई अगर हमारे लोगों के जो कह जला कि सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव बनौले हैं, तो ए लिए बनौले हैं जग्गो भैया कि हम लोग अपन तक ख्याल रखल भी जा, साथ साथ में प्रकृति का ख्याल रखल जा। और जैसे आप कह रहे हैं कि पशु पक्षी का ख्याल रखल जा है, तो सबका ख्याल रखे खातिर हम लोग पास क्षमता है, हम लोग के अपने क्षमता का मतलब पहचाने को
0: फूल मंत्र एक है कि जिया सबके जी, सबके जिया वा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो देखा ये कुल बात तो भाई भाई कैल है गौरी भौजी। और देखा हम हन देखा किसान है जा, गांव घर में निवास करत है जा, खेती किसानी के आगे बढ़ावत है जा।
1: हाँ, हाँ।
0: तो देखा होला का कि जोन खेती किसानी है विविधीकरण का हमेशा बात आवेले, वैज्ञानिक भैया लोग भी सुझावन भैया विविधीकरण। तो हम तो देखा यह कहल चाहते कि जैसे सब फसली खेती कर जा।
1: हाँ।
0: एक खेते में अगर असो धान बो देला।
1: हाँ।
0: तो अगले बेरी भैया वो खेत जवन है बदल दा, उनमें धान मत बोआ, भैया मक्का का बुआई कह दा, कुछ और बुआई कह दा
1: जवन।
0: हाँ, जवन आपकी योजना बने, गेहूं बोत हुआ तो भैया गेहूं लगातार एक चलत है भैया। खेत का अल्टा पलटा भैया जरूर करे के चाही,
1: जौने के फसल चक्र कहल जाला,
0: जेके फसल चक्र कहल जाला। और सबसे बड़ी चीज ये होले ओसे माटी का ताकत शक्ति बढ़े ले। गर्मी के दिन में देखा अपने भगेलू भैया हो देखा मूंग बोले हुआ भैया दलहनी फसल हुई गई भैया उर्दी भी बोवत हुआ लोग भैया मट्टी में अपने नाइट्रोजन का मात्रा बढ़त बा तो देखा आउ जब फल तोड़ लिया फली ओकर तोड़ने के बाद पलट के जोत दिया तो भैया अपने खेत के जवन है
1: खाद में
0: खाद
1: मिल गए हैं। तो ऐसा ही हम लोग के हमेशा अपने मतलब सही बुद्धि का प्रयोग करे के चाहिए ताकि अजय से होला ना का अजय साहब कहला है अभी भैया की बात कहला है तो जगह भैया देखे हमेशा जैसे कुछ भैया लोगों हो कि अपन नियमित खाली दलहन तिलहन अनाज पर रह जाना जबकि हमेशा हम लोग के विविध तरीका अपनावे के चाहिए अपने खेती के साथ जैसे बारी है गोरुवारी है
0: खेती बारी गोरुवारी का बात हमेशा कर
1: साथ में मुर्गी पालन है मछली पालन है रेशम कीट पालन है तो तमाम तरह का छोट छोट जो हम लोग व्यवसाय से जब जुड़ल जाए ना तो एक के साथ एक जब जुड़ल रही तो कोनो अगर प्रकृति से कोनो आपदा कोनो परेशानी अगर आता है सूखा बाढ़ हमेशा ही
0: भैया एक अगर प्रभावित हो तो चट्ठे संभारा वाला अपने पजेरे रही है कहें से कि आपके भी पीछे भैया घर गृहस्थी बाल बच्चा दद्दा बब्बा सब
1: सब सब दवाई खाना खर्चा पढ़ाई स्कूल सब तो आपका कभी भी खलेता आपका खाली ना रहे हमेशा भरल रहे
0: बिल्कुल
1: यही हम लोग के हमेशा विविध तरीका अपनावे के चाहिए
0: बिल्कुल सही बात करो। अब देखा मुनई भैया के देख ला भैया तरकारी तो बोले हुए गर्मी वाला बिच्चे बिच्चे मेढ़ी पर देखा मकई भी लगौले हुए देखा मकई भी उनका टूटत बा तरकारी सब्जी भी निकलत बा तो कहले के मतलब भैया कि हमके वो जुगुत में कैसे अपनावे के बाय कि भैया हर चीज हमारे पजरे रहे
1: सब कुछ हमारे पास रहे जो सजल थरिया
0: और सबसे बड़ वैज्ञानिक किसान भैया लोग होना जो अपने खेत में खुद कह के पैदा करे ना ओकर अपन जैसे कहल जाला रिजल्ट का मिलल
1: उगावे ना आ खुद खा ला आ सबके मतलब
0: खियावे
1: ना सब तक पहुँचावे ना
0: तो देखा हमन के बातचीत तो होत रही लेकिन कार्यक्रम के आगे बढ़ौले के जरूरत है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो देखा आज जवन है एक जानकारी हमरे पजरे है कि सफल पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान देवे वाली का बात बा सुजीत कुमार सिंह भैया जो एक प्रगतिशील किसान हुआ और सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कैले हुआ अगर इशारा करा तो हमन चुपायल जा भैया का कुछ समझावत हुआ सुनल जा
1: जानकारी सुनल जा

किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ कृषि सह व्यवसाय के रूप में हम लोगन मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुकर पालन, पशुपालन, एकरे साथे साथे मुर्गा पालन का भी कार्य करीला। कुछ किसान भाई लोग मुर्गा पालन या मुर्गी पालन अंडा बदे करना, कुछ लोग मांस आधारित मुर्गा पालन करना। आज देखें चतरा ब्लॉक के वृद्धि गांव कुसाही से सुजीत कुमार सिंह भैया अपने स्टूडियो में आल हम। सुजीत भैया, आपका अपने किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि आप एक मुर्गा पालक हम और मुर्गा पालन बहुत दिन से करत हम, तो लगभग कितना दिन?

0: से आप मुर्गा पालन से जुड़ल हुआ?
1: मुर्गा पालन से लगभग मान के चलिए 15 से 18 साल हो गया हमें
0: मने
1: ये काम करते हुए।
0: अच्छा, ये कार्य में सिर्फ नफा ही नफा होला कि कभी नुकसान भी हो जाला?
1: नहीं, जहां तक हमारा मानना है किसी भी काम में अगर सिर्फ मुनाफा हो तो पूरी दुनिया उसी तरफ जाती है।
0: जी,
1: खेती हो, मुर्गी पालन हो या मछली पालन हो, तो फायदा है तो नुकसान कहीं ना कहीं है। तो वैसे ही मुर्गी पालन में भी अब बराबर तो फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम फायदा होता है। कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब उसमें नुकसान होता है।
0: मने कभी कभी
1: हाँ
0: नुकसान भी उठावे के पड़ला। अच्छा सुजीत भैया, ई जवन मुर्गी पालन मुर्गा पालन आप करत हो, तो एकर शुरुआत जब आप लोगन करन तो कहाँ से स्टार्टिंग करन?
1: सबसे पहले भैया इसका तो हम चूजा मंगाते
0: जी
1: हैं
0: जी
1: हैचरी से, जैसे बनारस हैचरी है, गोरखपुर है, तो वहां से हम लोग चूजे को ऑर्डर करते हैं, चूजा आता है।
0: जी
1: उसके बाद अगर अपने फार्म में डालना है तो अपने में, या फार्मर को देना है तो फार्मर को देते हैं। और एक चूजे का जो मिनिमम वेट होता है वो 38 से 45 ग्राम के बीच में होता है,
0: अच्छा,
1: 38 से 45 ग्राम वो आएगा। उसके बाद उसका हम ब्रूडिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे जो उसका कमरा है उसमें धान की जो भूसी होती है
0: जी
1: सबसे पहले जमीन पे उसको हम डालते हैं। उसके बाद पेपर लगाएंगे, पेपर के बाद पानी का जो उसका ड्रिंकर है उसको लगाएंगे, फिर चूजे को हम छोड़ देंगे। तो चूजा अपना उसको दाने पानी को पिएगा।
0: जी जी
1: और ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब पानी हम लगा रहे हैं उसके कम से कम 4 घंटे बाद दाना देना चाहिए, फीड
0: अच्छा
1: देना
0: अच्छा
1: चाहिए। उससे क्या होता है जैसे हम लोग अंडा खाएं या ना खाएं, जो खाते हैं वो जरूर जानते हैं कि अंडे में जो पीला वाला भाग होता है
0: जी जी
1: वो जब मुर्गी में आता है, जब बच्चे में आता है, तो उसको हम योग कहते हैं। और उस योग को गलना बहुत जरूरी होता है।
0: अच्छा
1: अगर पानी दाना दोनों एक साथ दे देंगे तो वो जो योग होता है वो गलता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा चूजा जो है अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, मोर्टलिटी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि चूजा जब भी जिस किसी भी किसान भाई के पास जाए, जो भी फार्मर हो, तो फार्मिंग का पहला वो रूल ये बना ले कि ब्रूडिंग करते समय चूजे को सबसे पहले पानी दे,
0: जी
1: उसके 4 से 5 घंटे बाद दाना दे, तो वो चूजा हमारा जल्दी बीमार नहीं होगा।
0: अच्छा, एकरे बाद जब आप लोग पानी और दाना दे देना तो ओकरे बाद कोनो दर दवाई का भी उपयोग करना?
1: जी, मल्टी विटामिन लगाते हैं
0: जी
1: और एंटीबायोटिक लगाते हैं, जो 6 दिन तक ये दवा चलती है। इससे क्या होता है, मुर्गी में जो प्रथम दृष्टया छोटी मोटी बीमारियां आने का चांस होता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, वो
0: अच्छा
1: आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये दवा जरूर लगानी चाहिए, जो स्टार्टिंग का है उसको देना चाहिए।
0: अच्छा, ओकरे बाद जैसे दाना आप लोगन मुर्गी
1: जी
0: के बच्चन के देना जो चूजा बाया, तो ये दाना में भी छोट चूजा बदे दाना अलग होत हुई, अब बड़ मुर्गी मुर्गा बदे दाना अलग होला?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम बताना चाहेंगे। जैसे जब चूजा आता है हमारे यहाँ तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड मानक है 12 दिन तक उसको प्री स्टार्टर देना चाहिए।
0: अच्छा
1: वो दाना बहुत ही बारीक होता है और उसमें हर प्रकार से मेडिसिन की पर्याप्त मात्रा होती है, तो उसको देने से हमारे चूजे में स्ट्रेस नहीं आता और कोई बीमारी का चांस नहीं रहता है।
0: जी
1: और 12 दिन के बाद ये प्री स्टार्टर, 12 दिन तक प्री स्टार्टर हो गया, 12 से 20 दिन तक यानी 8 दिन तक या 20 से 25, 12 से 25वें दिन तक हम स्टार्टर देते हैं। प्री स्टार्टर से हल्का सा उसका दाना मोटा आता है, उसको स्टार्टर हम कहते हैं, वो दाना चलता है 25वें दिन तक। 25 से 35 दिन तक, 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद हमारा मुर्गा 800 ग्राम से लेके 900 ग्राम 1 किलो तक आ जाता है।
0: अच्छा
1: जब 800 ग्राम वो क्रॉस किया तो उसके लिए फिनिशर दाना आता है, ये तीसरा हो गया फिनिशर। इसको इस दाने को मुर्गी सेल करने तक ये फीड हम चलाते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जब तक ये सेल न हो, 1 किलो हो जाए, 1.25 किलो हो, 1.5 किलो हो, 2 किलो हो, तो फिनिशर ही दाना दिया जाता है।
0: अच्छा
1: उससे ग्रोथ भी मेंटेन रहती है और कास्टिंग भी कम आ जाती है।
0: अच्छा।

0: मुर्गी में जी।
1: अच्छा ये बताओ कि मुर्गी मुर्गन में रोग जोग का समस्या भी बहुत आवल है, तो कौन कौन ऐसा रोग मां जवन अधिक आवे का संभावना रहल है और ओकरे बदे आप लोगन उपाय का करना?
2: मुर्गी में देखिए भैया, सबसे पहले जैसे हमने बात किया सातवें दिन तक, 6, 12, 22,
1: जी
2: इसमें छठवें दिन जो है लेंटोजेनिक B1 नाम से वैक्सीन आती है,
1: जी जी
2: जो लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुर्गी में सबसे बड़ी और घातक जो बीमारी होती है वो रानीखेत डिजीज की होती है। इसकी रोकथाम के लिए हम लेंटोजेनिक B1 वैक्सीन डोज लगाते हैं।
1: जी
2: पहले लोग कहते थे कि लगता था, इंजेक्शन लगता था, लेकिन वो ऐसा अब नहीं है। वो जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को हम मुर्गी जो पानी पीती है उसके डब्बे में डाल देंगे, पानी में मिक्स करके वो मुर्गी इजी वे में उस पानी को पी लेती है, तो
1: अच्छा
2: वो बीमारी न आने का चांस खत्म हो जाता है, मतलब वो बीमारी उसके बाद नहीं आती है। उसके बाद 12 दिन पे इंटरमीडिएट प्लस करके वैक्सीन आती है दूसरी, उसको हम लगाते हैं। वो एक मुर्गी में सब, ये भी बहुत घातक बीमारी है, गैम्बोरो नाम की आती है।
1: जी जी
2: ये बीमारी जब आ जाती है भैया, तो आप समझिए कि पूरा लाट की लाट साफ हो जाता है। तो उसके रोकथाम के लिए हम इंटरमीडिएट प्लस वैक्सीन लगाते हैं, जो ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होता है। एक नॉर्मल भी वैक्सीन आती है इसमें
1: जी जी
2: सेकेंड डोज में इंटरमीडिएट नाम से, वो नॉर्मल नहीं लगाते,
1: जी
2: इंटरमीडिएट प्लस नाम से जो आती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो हमें इंटरमीडिएट प्लस को ही सेकेंड डोज में लगाना चाहिए। तीसरी जो वैक्सीन है हमारी, ये आपका लसोटा नाम से आता है, ये CRD के लिए स्पेशली होती है। जैसे मौसम चेंज हुआ तो मुर्गों में छिक की छिक छिक वाली आवाज आती है, जैसे हम लोग को सर्दी जुकाम होता है तो उनको भी सर्दी जुकाम होता है, तो
1: जी
2: उस बीमारी से बचाने के लिए ये लसोटा का डोज उनको लगाया जाता है कि इस तरह की कोई भी बीमारी मुर्गों में न आए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये सब दवा की तो हमने बात कर लिया, लेकिन इस सबसे भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो बायो सिक्योरिटी की होती है। ये मुर्गी में जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो मुर्गी में दाना पानी दे रहे हैं वही व्यक्ति दे। अगर
1: अच्छा
2: किसी को घूमने जाना है, किसी को देखने जाना है, तो बायो सिक्योरिटी को सावधानी पूर्वक जो भी उसके मानक है पूरा करने के बाद ही किसी को आप विजिट कराइए। अदरवाइज आपका जितना भी बड़ा फ्लॉक है, छोटी सी अगर असावधानी हुई तो आपका पूरा फ्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगा, मोर्टलिटी हो।
1: अच्छा
2: बायो सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, जैसे चूने का छिड़काव कर देते हैं गेट पे, कोई बाहरी व्यक्ति जा रहा है, जो भी स्लीपर पहना है, सैंडल पहना है, जूता, उसको बाहर ही हम निकलवा देंगे, हम अपना देंगे
1: जी
2: कि
1: जी
2: भैया इसको पहन के आप आओ, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना पहन के आप अंदर नहीं आ सकते हैं।
1: जी जी
2: तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल सुजीत भैया। अच्छा ये मुर्गन में प्रजात भी अलग अलग होना?
2: जी भैया, ये जैसे तो देखिए अभी हम जो करते हैं पालन, जिसका हमारे जो फार्मर करते हैं वो स्पेशली चिकन का है, तो चिकन में दो प्रजातियां अमूमन जो इस समय चल रही हैं, जो पाली जा रही हैं, दो प्रजातियां, एक क्राइलर है, दूसरा ब्रायलर है। ये पूरे मार्केट में आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसका कारण जो है इसकी पहुंच हर एक गरीब तक हो जाती है, ये थोड़ा सस्ता मिलता है।
1: अच्छा अच्छा
2: इससे ऊपर हम जाएंगे तो कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा होता है, वो आपका 5 से 6 महीना उसके तैयारी में लग जाता है,
1: जी जी
2: वो कॉस्टली पड़ता है, तो हर आदमी उसको नहीं खरीद सकता आसानी से। उसकी कीमत ही आप मान के चलिए 600-700 रुपए केजी होती है।
1: जी जी
2: और ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कलर की और ब्रायलर की, तो ये 125-150-200 के आसपास इसका मार्केट रहता है। बड़ी इजी वे में ये आपको 150 के आसपास बराबर ये मिला।
1: अच्छा अच्छा
2: जी।
1: अच्छा सुजीत भैया, जैसे ई तैयार भइले के बाद ये मुर्गन का बाजार भाव आपके का मिला?
2: बाजार भाव भैया, अब इसको इसका कोई फिक्स तो मार्केट होता नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई का वही यहाँ भी रूल आ जाता है। अगर डिमांड ज्यादा हो गई तो रेट बढ़ गया,
1: जी जी
2: और डिमांड अगर कम हो गई तो रेट गिर गया। उत्पादकता पे ही निर्भर करता है इसका रेट। अगर ज्यादा मात्रा में किसान भाई एक साथ बर्ड को तैयार करेंगे तो रेट नहीं मिलने वाला। अगर पेशेंस थोड़ा रखें, मैं तो बार बार अपने किसान भाइयों को कहता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बराबर ये कहता हूं कि जब भी चूजे का रेट ज्यादा हो, हम तो यहां तक कहते हैं कि 30 रुपए से अगर चिक्स का रेट ज्यादा है, आपकी कैपेसिटी अगर 5000 फार्मिंग की है तो आप 2000 पालिए, क्योंकि जब भी हमने देखा है चूजे का रेट ज्यादा होता है कभी भी किसान भाई को अच्छा रेट नहीं मिल पाता। लोग ये सोचते हैं चूजे का रेट महंगा है, मुर्गा महंगा बिक रहा है, तो ये जब तैयार होगा तब भी महंगा बिकेगा, ऐसा होता नहीं है।
1: अच्छा,
2: जब चूजे का रेट महंगा होता है 80% लोग ये सोचते हैं कि अभी डाल लो, आगे रेट बेहतर मिलेगा, वही हम मार खा जाते हैं। जब चूजा सस्ता होता है लोग नहीं डालते हैं, भूल जाते, वहां फिर कंपेयर करेंगे कि सस्ता है तो रेट नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा होता है भैया। जब चूजे का रेट सस्ता होता है उस समय आप डालिए, आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
1: अच्छा,
2: और जब ज्यादा रेट है, ठीक है आपका यही काम है, ये बिजनेस है आपका, बंद नहीं कर सकते, लेबर वर्ग जो काम कर रहे हैं वो चले जाएंगे छोड़ के, तो 5000 की जगह पे हम 2000 फार्मिंग करें। और मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट 5000 पाल के आप जितना नहीं कमाएंगे, 2000 पाल के उससे बेहतर आप स्थिति में होंगे
1: जी।
2: तो इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए मुर्गी लाइन।
1: बिल्कुल सही बात आप कहते हो। अच्छा, खर्चा बर्चा कटले के बाद फायदा का हो जाता हुई अगर 1000 मुर्गी या मुर्गा पालक पालन करता?
2: जी जी, अगर सब कुछ अच्छे से आप करेंगे तो साल का जो एवरेज आप निकालेंगे, इसमें महीने का तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि 90 रुपए की भी मुर्गी बिकती है, 100 रुपए केजी भी बिकेगी, 120 भी बिकेगी, और इस समय 140 की भी बिकेगी।
1: जी जी,
2: तो एवरेज की जहां तक हम बात करते हैं, जहां तक हम निकाल पाते हैं, जो हम कैलकुलेशन अपने फॉर्म की करते हैं या हमारे जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं मुर्गी पालक, उनका जो मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो 1000 बर्ड पे मिनिमम साल का अगर एवरेज आप देखेंगे भैया तो 25000 रुपए।
1: अच्छा,
2: मिल जाते
1: माने
2: सब कुछ खर्चा काटने के बाद 1000 अगर आप पाले तो आपको 25000 रुपए वो मुर्गी छोड़ जाते।
1: बिल्कुल, कृषि सह व्यवसाय के रूप में एक अच्छी आमदनी अपन किसान भैया लोग प्राप्त कर सकना। सुजीत कुमार सिंह भैया, आज आप अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और अपने अनुभव का इतना बढ़िया बात अपने किसान भाई लोगन के साथ साझा कर लेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: गौरी भौजी, देखा कुछ संदेश सुनल गल, साथ में सुजीत कुमार सिंह भैया, सुनील कुमार तिवारी भैया से बातचीत रहल। सफल पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान दे वाली का बातें हैं, जानकारी सुनल गल। अभी कहत है कि भैया एक आंख खेते में एक आंख बाजारी में, तो कहाँ का बाजार भाव बाय हाथे में बचा?
7: आज का बाजार भाव है कुंतल में और रावर्सगंज का है सब्जी मंडी का। बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हूँ, हम जल्दी जल्दी बता दें कि लाल आलू है 900 से 1000 रुपया कुंतल, सफेद आलू है 800 से 900 रुपया, प्याज है 1000 से 1200 रुपया, लहसुन है 4000 से 5000 रुपया, परवल है 6000 से 7000 रुपया, भिंडी है 500 से 700 रुपया कुंतल, बोड़ा है 600 से 700 रुपया, नेनुआ है 600 से 700 रुपया, लौकी है 400 से 500 रुपया कुंतल, करेला है 1500 से 1600 रुपया, पालक है 800 से 1000 रुपया।
6: तो ये रहल है देखा रापड़गंज मंडी का थोक बाजार भाव, और पाती के माध्यम से ठाती भैया भेजना हम उनके कार्यक्रम में शामिल कर लिया। अब देखा एक मनसायन सुनल जाए किसानी की, तो साथ में कुछ संदेश।
8: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं।

0: परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: गौरी भौजी देखा परशुराम संगाती भैया जो है ना किसानी गीत सुनावत रहा
1: खेती करे तरकारी।
0: हाँ तो देखा जोन बात एक हमन शुरुआती दौर में कर तली है जा कि विविधीकरण जवन है उसे कई तरह का फायदा भी होला।
1: हाँ हाँ हाँ
0: का का होला
1: भैया देखा फायदा ही फायदा बा विविधीकरण का। जैसे हम लोग शुरू में ही बात कह ली है ए बारे में कि अगर कहीं से फसल हम लोग का चूक जाए या कम पैदावार हो तो अगले से हम लोग का सहयोग मिल जाए।
0: हाँ दूसरे से तीसरे से चौथे से भाई अब विविधीकरण में तो भाई हर बात बतावल गल भैया मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा जवन भी है भैया मछली
1: रेशम कीट पालन हाँ, है बकरी तो पालन है मुर्गी अगर पालन है,
0: अगर पशुपालन हाँ, तो ऐसे जवन अगर एक भी गड़बड़ाएल तो दूसर सहयोग कर देला।
1: बिल्कुल।
0: और अब घड़ी के सुई सारा करत बा अपने कार्यक्रम के जो समेटल जाए आदेश का आशीष भैया पहले ही अपन ललटेन उठा लेना चला चला के
1: भैया बोला जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म इंतकाम में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म इजाजत का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना गुलजार की है और तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को फिल्म इजाजत में। गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 10 बजे का, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों के झरोखों से। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:23 पर और रात 8 बजे।

8:15 का समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सबरस कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:31 पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल तर्पण, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में

0: बड़े श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
3: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
5: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा। कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार

0: नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेके आए हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है असद भोपाली ने, संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने। फिल्म का नाम है पुलिस पब्लिक।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आइए अब सुनते हैं फिल्म साया का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आपने सुना फिल्म खूबसूरत में। गीतकार थे सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया। आइए अब सुनते हैं फिल्म दुकान का ये गीत अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत को लिखा है अरुण भैरव ने और संगीत दिया है अल्ताफ रजा ने।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को फिल्म दुकान में। गीत को लिखा था अरुण भैरव ने और संगीत दिया था अल्ताफ रजा ने। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की पहली गजल है मिताली सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म खाकी का ये गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार राम संपत।

ये थे किशोर कुमार और आशा भोसले फिल्म जानी दोस्त में। गीत इंदिवर का था और संगीत बप्पी लहरी का। आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है साजन की सहेली।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं 102.7 FM पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

दिल्ली से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी

आकाशवाणी, जिसे पहले ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, भारत का सबसे पुराना और विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है। आकाशवाणी ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोकतांत्रिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभावों के बावजूद आकाशवाणी आज भी करोड़ों लोगों के तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। सबसे पहले आकाशवाणी ने समाचार प्रसारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश विदेश की घटनाओं, सरकारी योजनाओं, चुनावों, मौसम तथा आपदा संबंधी सूचनाओं को जनता तक शीघ्र पहुंचाया गया। दूर दराज के गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां इंटरनेट या टेलीविजन की सुविधा कम है, वहां आकाशवाणी आज भी लोगों का प्रमुख सहारा बनी हुई है। आकाशवाणी की पहुंच भारत की लगभग 99% जनसंख्या तक है। आकाशवाणी ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर अपने प्रसारण को और प्रभावशाली बनाया। रेडियो के साथ साथ मोबाइल एप्स, एफएम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से भी कार्यक्रम सुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे युवाओं और नई पीढ़ी का जुड़ाव आकाशवाणी से बढ़ा। सरकार और प्रसार भारती ने निजी कंटेंट निर्माताओं को भी आकाशवाणी और डिजिटल मंचों से जोड़ने की पहल की, जिससे नई और रोचक सामग्री तैयार होने लगी।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी के लिए एक खास समय था। देश में उपग्रह चैनलों और निजी प्रसारणों की आहट तेज हो रही थी, लेकिन आकाशवाणी अब भी जनता के दिलों में अपनी साख और स्थान बनाए हुए था। उस समय आकाशवाणी सिर्फ समाचार और मनोरंजन का ही माध्यम नहीं था, बल्कि श्रोताओं की जीवन शैली और सोच से गहराई से जुड़ा हुआ एक भरोसेमंद साथी भी था। गांव-गांव तक पहुंचने वाली इसकी तरंगें आम लोगों के लिए सूचना और ज्ञान का मुख्य साधन बनी रही। आकाशवाणी ने सामाजिक सरोकारों और जागरूकता के कार्यक्रमों पर जोर दिया। किसानों के लिए कृषि संबंधी सुझाव, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन, महिलाओं के लिए विशेष प्रसारण और बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों ने रेडियो की पहचान को और मजबूत किया। मनोरंजन के क्षेत्र में भी उस समय प्रसारित होने वाले नाट्य रूपांतरण, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों ने लाखों श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखा। समाचारों की दृष्टि से आकाशवाणी सबसे विश्वसनीय मंच रहा। चुनाव, संसद और कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सटीक और संतुलित कवरेज ने इसे आम नागरिक के लिए अनिवार्य बना दिया। निजी चैनलों की भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन आकाशवाणी की निष्पक्षता, भाषा की सादगी और हर वर्ग तक पहुंचने की क्षमता ने उसे औरों से अलग बनाया। यही वजह थी आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण संस्था नहीं, बल्कि लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और विश्वास की आवाज थी।

इसी के साथ यादों के झरोखे से कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म डॉन का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। आइए अब सुनते हैं सईद कादरी के लिखे इस गीत को केके की आवाज में। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है गैंगस्टर।

द किलर। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत के और श्रेया की, श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत को लिखा था जली शेरवानी ने और संगीत तैयार किया था साजिद वाजिद ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म भूल भुलैया का ये गीत के की आवाज में। इस गीत को तैयार किया है प्रीतम ने और इसको लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म जुर्म का ये गीत। शब्द रचना इंदिवर की है, तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़ करके खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं,
2: जी,
1: जो
2: जी।
1: लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का यह खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर डीओपी

0: कबड्डी इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नौगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिए में, जैसे मूसाखाण बंधा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है। बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं। जैसे हमारे पास ही हीरा लाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश बिश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई। तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा, और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि
0: जी
1: उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे।
0: जी
1: अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ ना कुछ हासिल ही होगा। तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ, मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने
0: जी
1: कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कोई कर ले, लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए,
0: जी
1: कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है,
0: जी जी
1: नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है।
0: जी
1: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है।
0: जी
1: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
0: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहां पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था, और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाब चंद चिरई गांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरई गांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया, और अर्जुन पुरस्कार जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है।

0: है वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ। चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गाँव है डबरिया, उस गाँव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गाँव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूँ। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त किया। जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखे इसका पावर बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला, और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारी जगह मेडल, और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का,
0: जी
1: उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है,
0: जी
1: लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए,
0: जी
1: इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के
0: बिल्कुल
1: समय में।
0: जी बिल्कुल
1: तो
0: बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का,
0: जी
1: खास करके खेलों में, वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा, उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम लोग छोटे थे, गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम, भारत की 80% जनता गांव में रहती। अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है, और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे एथलेटिक्स को लीजिए, पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करे। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नन्हे सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको बीपीएड एमपीएड डिप्लोमा कराया, छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं सिर्फ पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कितने विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
4: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घोड़ सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चों से पहले समझ जाए, ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनर्स में।
3: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
4: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉल्ट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
3: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों जय हिंद।
5: जय हिंद।
3: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना, तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
6: मैं अंकिता देवरिया।
7: मैं अदिति राय, गाजीपुर से।
8: मैं आरती,
5: सोनमती से।
6: मैं सेजा सेवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रीचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर फिरोज आवाज।
3: तो बच्चों जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे। सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का,
10: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
11: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
3: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
16: 10 बजे तक।
3: तो बच्चों मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
16: मेरा नाम खुशी पटेल है, मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया मुझे गेम खेलने के लिए, फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर हम करेंगे, फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए, हॉस्टल में हो गया 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
3: तो खुशी आप क्या खेलती हैं?
16: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
3: अच्छा, प्रशिष्टि आप क्या खेलती हैं?
17: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
3: आप कब से खेल रही हैं?
17: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ और सर के अंडर हमें बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर करते हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं, हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
3: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
4: मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, हमने वो पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन में बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है, ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
3: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
4: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम, अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं, इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटें के लिए और उनका उपचार होता है।
3: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
4: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
3: खेल के दौरान।
4: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो, अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है, अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है, जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना है अगर सामान चोट है तो, उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
3: अच्छा, श्रोताओं बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
4: थैंक यू मैडम।
3: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
18: मैडम, ये बता देंगे, एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल की बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
3: जी,
18: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
3: सर सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
18: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं। और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं। इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
3: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
18: जी हाँ बच्चे, मैडम यह है कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है। और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में, श्योर मेडल मिलेंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
18: थैंक यू सो मच।
3: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
4: मैम पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेन्यू तैयार वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेन्यू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज़्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और उनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
3: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
4: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंपर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
3: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
4: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीएएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
3: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं, एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है?
4: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
3: एक अकेला ही काफी है
4: और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे, अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है, और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में, तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अब ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
3: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से, साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
4: हाँ बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आ सकती हैं। तो महिला

0: अब आगे हो गई है पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
4: आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम लेके आए हैं फिल्म इश्क है तुमसे से, जिसे लिखा है संजय छैल ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाजें हैं शान और अलका याग्निक की।

तुमको ना भूल पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। शब्द रचना समी सलीम बिजनौरी की थी और तर्ज बनाई थी डब्बू मलिक ने। आइए अब सुनते हैं शान और महालक्ष्मी को फिल्म रिश्ते में। गीत को लिखा है अब्बास कटका ने और संगीत तैयार किया है संजीव दर्शन ने।

नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत दिया था प्रीतम ने और फिल्म थी फाइट क्लब। नाम गुम जाएगा, लीजिए अब सुनिए इस फिल्म का गीत बाबुल सुप्रियो की आवाज में। गीतकार हैं प्रवीण भारद्वाज और संगीतकार आनंद मिलिंद।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म प्रतिज्ञाबद्ध का ये गीत अनवर सागर और साधना सरगम की आवाजों में। गीत को लिखा है हसरत कमाल ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत के साथ ही आपके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026

0: पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल सुबह 5:50 पर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।